मिरिंग में 197.2 मीटर अर्थात 1521 किलो हर्ज और 104.5 एफएम मेगा हर्ज पर ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। आज सन 2026 जुलाई महीने की 5 तारीख व दिन है रविवार। अब आरंभ होता है हमारा आज का प्रसारण। अब से लेकर रात्रि 9:16 तक प्रसारित किए जाने वाले तमाम कार्यक्रमों को आप श्रोताओं तक पहुंचाने के लिए ड्यूटी पे उपस्थित रहेंगे प्रसारण सहायक श्री थुतन ताशी, न्यूनतम कक्ष में उपस्थित तकनीकी अभियंता श्री न्यूटन बोरा और श्री अश्युत बर्मन, ट्रांसमीटर में उपस्थित तकनीकी अभियंता श्री हेमंत श्रोगेरी, मनपा में उत्कोषक श्री कुंजो संगे की तथा अन्य सहकर्मियों के साथ मैं हूं आज की हिंदी उद्घोषिका येशी पेमा। हम सभी आकाशवाणी सुन रहे आप तमाम श्रोताओं का आज के इस प्रसारण में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं।

ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 2 बजने वाले हैं। श्रोताओं, कार्यक्रम के आरंभ में पहले आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित मीटिंग।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुनीष शर्मा। मुख्य समाचार। होर्मुज जलडमरू मध्य से तरल प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर शुरू होने के बाद सरकार ने एलएनजी पर लगी आपातकालीन पाबंदियां हटाई। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम के तहत राज्यों को 25,000 करोड़ रुपए की सहायता जारी की। केंद्र सरकार ने मेटा को इंस्टाग्राम से बच्चों के शोषण से जुड़े विज्ञापन हटाने का आदेश देते हुए 7 दिन के भीतर जवाब मांगा। छत्तीसगढ़ की सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजनबाई का निधन। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज शाम इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला। और अब समाचार विस्तार से। सरकार ने तरल प्राकृतिक गैस एलएनजी की आपूर्ति से आपातकालीन पाबंदियां हटा ली हैं। ये निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष में युद्ध विराम के बाद होर्मुज जलडमरू मध्य से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर शुरू होने के बाद किया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि प्राकृतिक गैस आपूर्ति नियमन आदेश 2026 में संशोधन किया गया है।
1: इस संशोधन के अंतर्गत उन विशेष आपातकालीन प्रावधानों को हटा दिया गया है जिनके अंतर्गत सरकार को देश में उत्पादित प्राकृतिक गैस और आयातित एलएनजी के आवंटन में प्राथमिकता देने की अनुमति थी। होर्मुज जलडमरू मध्य से एलएनजी की खेप में रुकावट आने के बाद इस साल मार्च में आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत ये आपातकालीन आदेश जारी किया गया था। इस बीच मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर उन खबरों को भ्रामक और गलत बताया है जिनमें ये दावा किया गया है कि भूटान ने भारत से E20 पेट्रोल आयात करने का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। मंत्रालय ने कहा कि भूटान को E20 पेट्रोल निर्यात करने का कोई प्रस्ताव नहीं दिया गया है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 1 जुलाई से विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण जी राम जी अधिनियम 2025 सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। श्री सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की मुख्य सहायता राशि जारी की। श्री चौहान ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ वीबीजी रामजी योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा भी की। उन्होंने कहा कि आज जारी की गई पहली किस्त का

0: उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि राज्यों के पास पर्याप्त धनराशि हो ताकि मजदूरी का भुगतान 15 दिनों के भीतर किया जा सके। उन्होंने कहा कि मनरेगा को लागू होने में 3 साल से ज्यादा का समय लगा था, जबकि विकसित भारत जी राम जी को पूरे देश में सिर्फ 1 दिन में लागू कर दिया गया।
1: मनरेगा को पूरे देश में लागू करने में 3 साल लगे थे, लेकिन मुझे आप सब पर गर्व है, 1 साल 2 साल नहीं, पहले दिन ही विकसित भारत जी राम जी योजना एक साथ पूरे देश में लागू हो गई। 100 दिन नहीं, अब 125 दिन रोजगार, 5 साल में 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि 2,86,000 पंचायतों में ठीक से लग गई, तो गांव संपूर्ण विकसित हो जाएंगे, समृद्ध और विकसित गांव का निर्माण हो जाएगा।
0: श्री चौहान ने कहा कि वीबीजी रामजी योजना के तहत मजदूरी दरों में औसतन लगभग 10% की वृद्धि की गई है। असम के गुवाहाटी में कल से 2 दिवसीय ब्रिक्स मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक शुरू होगी। गृह मंत्रालय ने कहा कि इस बैठक में ब्रिक्स के सदस्य देशों के मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुख और वरिष्ठ अधिकारी विचार विमर्श करेंगे। इससे मादक पदार्थ नियंत्रण एजेंसियों के समूहों में संस्थागत निरंतरता को सशक्त बनाने और गहन परिचालन सहयोग को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। भारत की अध्यक्षता में कल से केरलम के कोच्चि में 2 दिवसीय ब्रिक्स महिला कार्य समूह की बैठक शुरू होगी। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बताया कि ब्रिक्स देशों के अधिकारी महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के क्षेत्रों सहित अन्य क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण से संबंधित मुख्य मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रोबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। विदेश मंत्रालय के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने कहा है कि प्रधानमंत्री के इंडोनेशिया दौरे में कूटनीतिक बैठकों के साथ साथ सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा।
2: प्रधानमंत्री का मुख्य कार्यक्रम जकार्ता में होगा। इसके अलावा वे योग्याकार्ता का भी दौरा करेंगे, जहां वे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल प्रम्बानन मंदिर परिसर जाएंगे। भारत और इंडोनेशिया इस ऐतिहासिक मंदिर परिसर के संरक्षण और संवर्धन के लिए मिलकर काम करने की योजना बना रहे हैं।
0: आकाशवाणी से विशेष बातचीत में इंडोनेशिया में भारतीय राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच संबंधों में मजबूती और आर्थिक जुड़ाव में वृद्धि स्पष्ट रूप से दिखाई देगी।
3: The significance is immense.
2: भारत और इंडोनेशिया का संबंध 2 प्राचीन सभ्यताओं की मजबूत साझेदारी का प्रतीक है। दोनों देशों के रिश्ते सदियों पुराने हैं और आज भी कई क्षेत्रों में लगातार मजबूत हो रहे हैं। मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया यात्रा से दोनों देशों के बीच सहयोग के नए अवसर खुलेंगे। इससे द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे, साथ ही व्यापार, निवेश और आर्थिक साझेदारी को भी नई गति मिलेगी।
3: ग्रेटर इकोनॉमिक एंगेजमेंट बिटवीन दिस 2 लार्ज कंट्रीज।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने भारत को एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार बताया है। श्री अल्बनीज ने कहा कि हमारे संबंध व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर आधारित हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम पर शुल्क वाले विज्ञापनों में बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री के प्रसार को लेकर मेटा को कड़ी चेतावनी जारी की है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार सरकार ने इंस्टाग्राम को ऐसी विषय वस्तु को बढ़ावा देने और इसकी पहुंच को सुगम बनाने वाले सभी विज्ञापनों और सामग्री को बंद करने का आदेश दिया है। एक रिपोर्ट।
4: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मेटा से 7 दिनों के भीतर विस्तृत स्पष्टीकरण मांगा है। सरकार इस बात की समीक्षा कर रही है कि क्या प्लेटफॉर्म ने भारत की मध्यस्थ सुरक्षा दिशा निर्देशों

0: अनुपालन किया है। भारत में डिजिटल कानूनों के अंतर्गत अश्लील सामग्री और बाल यौन शोषण सामग्री का वितरण एक अपराध है। इससे पहले मंत्रालय ने उन रिपोर्टों का संज्ञान लिया था जिनमें कहा गया था कि इंस्टाग्राम पर कुछ आपत्तिजनक सामग्री प्रदर्शित की जा रही है जो बाल यौन शोषण को बढ़ावा देती है और अधिकारियों को मेटा से जवाब मांगने के निर्देश जारी किए थे। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह कल से जिनेवा में एआई गवर्नेंस पर संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक संवाद में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। दो दिवसीय वैश्विक एआई संवाद में एआई पर स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक पैनल की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी जो एआई की क्षमताओं, उभरते अवसरों और जोखिमों का पहला स्वतंत्र वैज्ञानिक मूल्यांकन प्रदान करती है। भारत स्विट्जरलैंड के जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के नवे सत्र की अध्यक्षता करेगा। ये सत्र संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास संगठन द्वारा 6 से 8 जुलाई तक आयोजित किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध पंडवानी गायिका और पद्म विभूषण से सम्मानित तीजन बाई का निधन हो गया है। वे लंबे समय से बीमार थीं। रायपुर के एम्स में उनका इलाज चल रहा था। आज सुबह लगभग 3:15 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। डॉक्टर तीजन बाई का अंतिम संस्कार आज शाम उनके पैतृक गांव दुर्ग जिले के गनियारी में राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा।
2: दिन दिन
3: तीजन बाई का जन्म 24 अप्रैल 1956 को छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के गनियारी गांव में एक साधारण परिवार में हुआ था। बचपन से ही उन्हें महाभारत की कथाएं सुनने और गाने का शौक था। सामाजिक विरोध और आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने अपने जुनून को नहीं छोड़ा। तीजन बाई ने अपनी सशक्त आवाज, प्रभावशाली अभिनय और अनोखी प्रस्तुति शैली से पंडवानी को देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक नई पहचान दिलाई। महाभारत की कथाओं को मंच पर जीवंत करने की उनकी कला ने उन्हें भारतीय लोक संस्कृति की सबसे प्रतिष्ठित कलाकारों में शामिल किया।
4: दोनों जने मिलकर सुनो कि मैं कुरुक्षेत्र मैदान में मैं भूल के शस्त्र नहीं चलाऊं।
5: अच्छा, जे जान पड़े तो ले गो, नहीं तो मोला छोड़ दे भैया, सेना ले ले चला। सावन में
3: विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई के निधन पर दुख व्यक्त किया है। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रामेन डेका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने डॉ तीजन बाई के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच कल बातचीत हुई। रूस के राष्ट्रपति के सहयोगी यूरी उशाकोव ने क्रेमलिन में बताया कि श्री पुतिन ने राष्ट्रपति ट्रंप को अमेरिका के स्वतंत्रता दिवस की 250वीं वर्षगांठ पर बधाई दी। बातचीत के दौरान राष्ट्रपति पुतिन ने श्री ट्रंप को यूक्रेन युद्ध की स्थिति के बारे में जानकारी दी। अमेरिका ने कल राष्ट्रव्यापी समारोह के साथ अपनी स्वाधीनता की 250वीं वर्षगांठ मनाई। मौसम संबंधी बाधा के बाद वाशिंगटन में आयोजित मुख्य कार्यक्रम नेशनल मॉल में शुरू हुआ। राष्ट्रपति ट्रंप ने राष्ट्र के इतिहास में इस वर्षगांठ को एक ऐतिहासिक क्षण बताया। मौसम विभाग ने आज गुजरात, कच्छ, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
6: मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर, गुजरात, हरियाणा और पंजाब के बाकी हिस्सों और राजस्थान के कुछ और इलाकों में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक और उत्तराखंड में तेज से बहुत तेज वर्षा का अनुमान जताया है। विभाग ने कहा है कि अगले 2-3 दिनों में दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब और चंडीगढ़ में छिटपुट बारिश हो सकती है। मौसम विभाग

0: ने आज हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरलम, माहे, मराठवाड़ा, देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और तेलंगाना में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने दिल्ली में आज बादल छाए रहने और मध्यम वर्षा का अनुमान जताया है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
1: महाराष्ट्र में तेज बारिश के कारण कई जगहों पर जल भराव हो गया है। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज शाम लॉर्ड्स में इंग्लैंड का मुकाबला होगा ऑस्ट्रेलिया से। दोनों टीमें अपराजित रहते हुए फाइनल में पहुंची हैं। ऑस्ट्रेलिया ने सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज को हराया और इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। होर्मुज जलडमरू मध्य से तरल प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर शुरू होने के बाद सरकार ने एलएनजी पर लगी आपातकालीन पाबंदियां हटाई। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम के तहत राज्यों को 25,000 करोड़ रूपये की सहायता जारी की। केंद्र सरकार ने मेटा को इंस्टाग्राम से बच्चों के शोषण से जुड़े विज्ञापन हटाने का आदेश देते हुए 7 दिन के भीतर जवाब मांगा। छत्तीसगढ़ की सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई का निधन। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। और आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज शाम इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का होगा मुकाबला। और इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: श्रोता अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित दोपहर समाचार। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 2:30 हो गए हैं। लीजिए श्रोता, प्रस्तुत है भक्ति गीत का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम वंदना में आज आप सुनिए अनिगिन्न जंगमो और साथियों द्वारा चंद बोध भक्ति गीत।

0: श्रोताओं, इस बोध भक्ति गीत के साथ ही भक्ति गीतों का कार्यक्रम वंदना अब यहीं पर समाप्त हुआ।
1: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे।
2: सो इजी।
3: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 3 बज चुके हैं। श्रोता प्रस्तुत है विभिन्न पंत का कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत। कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत में आयाज सुनते हैं मार्तो कमदक के आवास में चन आधुनिक कालो गीत।

0: इस आधुनिक कालो गीत के साथ ही विभिन्न प्रांत का कार्यक्रम प्रदेश संगीत अब यहीं पर समाप्त हुआ। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 3:30 हो गए हैं। लीजिए श्रोता, पेश है दैनिक कार्यक्रम मेरी बात। इस कार्यक्रम में आज आप सुनिए पीएम श्री जेनमी तवांग की विज्ञान की छात्रा डिकी लामो से एक वार्ता। वार्ता का विषय है जलवायु परिवर्तन का प्रकृति समुदाय पर प्रभाव।
1: ताशिदली आप सभी को मैं डिकी लामो पीएम श्री कक्षा 11वीं विज्ञान की आकाशवाणी तवांग से प्रसारित मेरी बात में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में मेरी वार्तालाप का विषय है जलवायु परिवर्तन का पर्वतीय समुदायों पर प्रभाव। आज मैं जिस विषय पर आपसे बात करने जा रही हूँ वह केवल पर्यावरण से जुड़ा विषय नहीं है बल्कि हमारे अस्तित्व, संस्कृति और भविष्य से जुड़ा प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन का पर्वतीय समुदायों पर प्रभाव। साथियों, जलवायु परिवर्तन आज किसी रिपोर्ट या सम्मेलन की बात नहीं रह गई है। यह परिवर्तन हम अपने आसपास महसूस कर सकते हैं। बीते कुछ वर्षों में हमने देखा है कि गर्मियां पहले से अधिक बढ़ने लगी है, सर्दियों में बर्फबारी अनियमित हो गई है, बारिश कभी बहुत अधिक हो तो कभी बिल्कुल नहीं होती है। यह सभी परिवर्तन मानव गतिविधियों का परिणाम है। पर्वतीय क्षेत्रों में ग्लेशियर जीवन रेखा होती है लेकिन बढ़ते तापमान के कारण ये तेजी से पिघल रहे हैं। इससे स्रोत सूख रहे हैं, भविष्य में जल संकट बढ़ रहा है। पहाड़ों में अब ना तो बारिश समय पर होती है और ना ही बर्फबारी पेरी जैसी रही है। साथियों, अब मैं जलवायु परिवर्तन हमारे मोनपा जनजाति को कैसे प्रभावित कर रही है के विषय पर बोलना चाहूंगी। मोनपा समुदाय सदियों से प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर जीवन जीते आए हैं। हमारी संस्कृति, कृषि, पशुपालन और जीवन शैली पूरी तरह से पहाड़, मौसम और प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित है लेकिन आज बर्फबारी का समय बदल रहा है। जल स्रोत धीरे धीरे सूख रहे हैं, पशुपालन की कठिनाइयां बढ़ रही हैं। इसके बावजूद मोनपा जनजाति की पारंपरिक ज्ञान, प्रकृति संसाधनों की रक्षा, सामुदायिक जीवन और सदा जीवन आज पूरी दुनिया के लिए एक सीख है। यदि हम उनके अनुभव और प्रकृति सम्मत जीवन शैली से सीख लें तो जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को काफी हद तक कम किया जा सकता है। यहाँ के मौसम पर निर्भर रहती है मोनपा समुदायों की पारंपरिक खेती लेकिन अब फसल बोने का समय बदल गया है। पाला और असमय बारिश फसलों को नुकसान पहुंचा रही है। चारागाह क्षेत्रों में कमी आ रही है। जब जीवन कठिन हो जाता है तो युवा रोजगार की सुविधाओं की तलाश में शहरों की ओर पलायन करने लगते हैं। इससे गांवों की जनसंख्या घटती है, पारंपरिक ज्ञान संस्कृति कमजोर होती है। समाधान सरकार या संस्थाओं तक सीमित नहीं है, हर नागरिक की भूमिका महत्वपूर्ण है। पेड़ लगाना और बचाना, जल स्रोतों की रक्षा करना, प्लास्टिक का कम उपयोग करना आदि। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी, यदि तवांग के पहाड़ सुरक्षित है तो नीचे बहने वाली नदियां सुरक्षित है। यदि मोनपा संस्कृति सुरक्षित है तो प्रकृति का संतुलन सुरक्षित है। आइए हम सब मिलकर संकल्प ले कि जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध सिर्फ बातें नहीं जिम्मेदारियां निभाएंगे। इसी संदेश के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद।
0: श्रोता, अभी आप सुन रहे थे पीएम श्री जेनमी तवांग के छात्र डिकी लामो से एक वार्ता।

वार्ता का विषय था जलवायु परिवर्तन का प्राकृतिक समुदाय पर प्रभाव। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 3:35 होने वाले हैं। लीजिए श्रोता, प्रस्तुत है महिलाओं पर केंद्रित फिल्म संगीत का कार्यक्रम नारी संगीत। कार्यक्रम नारी संगीत का पहला गीत आइए सुनते हैं, हेमा सिरदेसाई की आवाज में फिल्म चकदी इंडिया से। इस गीत के रचयिता हैं जयदेव सैनी तथा संगीत दिया है सलीम सुलेमान ने।

कार्यक्रम का अगले गीत श्रोताओं आइए सुनते हैं जावेद अख्तर के रचे गीत पर फिल्म दिल धड़कने दो से सोनिधि चौहान की आवाज में।

श्रोताओं, भी आपने मोनाली ठाकुर की आवाज में फिल्म महाराज से एक गीत का आनंद लिया। इस गीत के रचयिता थे कौशल मुनीर तथा संगीत दिया था सोहेल सेन ने। आइए कार्यक्रम को यहीं जारी रखते हुए सुनते हैं जावेद अख्तर के गीत पर फिल्म आयशा से अमित त्रिवेदी, नकस अजीत और ऐश किंग की आवाजों में एक गीत।

श्रोताओं, अभी आप हमें आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम नारी संगीत में। आकाशवाणी के तमाम केंद्र से मीडियम 197.2 मीटर अर्थात 1521 किलो हर्ट्ज पर।

बस मैं श्रोता, अभी आपने फिल्म मेरी ब्रदर की दुल्हन से एक गीत सुना। इस गीत के रचयिता इरशाद कामिल तथा संगीतकार थे सोहेल सेन। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत, कुमार के गीत पर फिल्म बागी से। इस गीत के गायक हैं मीत प्रो सेफ्टी, अरिजीत सिंह, रोज किल्ला और खुशबू ग्रेवल।

0: श्रोताओं, इस गीत के साथ ही महिलाओं पर केंद्रित फिल्म संगीत का कार्यक्रम नारी संगीत अभी यहीं पर समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का तांग केंद्र है, समय शाम के 4 बज गए हैं। लीजिए श्रोता, प्रस्तुत है महिलाओं पर आधारित कार्यक्रम महिला जगत। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आइए सुनते हैं दोजीरिमा की आवाज में श्रीमती शोभा शर्मा द्वारा लिखित तवांग की प्राकृतिक सुंदरता और ऐतिहासिक बौद्धमठ के बारे में।
1: महिला जगत कार्यक्रम सुनने वाले आप सभी श्रोताओं को दोर्जी डोलमा का नमस्कार। श्रोताओं, भारत एक स्वतंत्र धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। यहाँ अनेक धर्म अनुयायी तथा भाषा भाषी के लोग रहते हैं। संपूर्ण राष्ट्र का एक ध्वज, एक लोकसभा, एक राष्ट्र चिन्ह तथा एक ही संविधान है। सांस्कृतिक दृष्टि से देखें तो संपूर्ण देश में एक अद्भुत समानता दिखाई पड़ती है। विभिन्न प्रकार के रहन सहन, खान पान तथा पहनावे के होने पर भी सारा देश एक है। यहाँ की सांस्कृतिक एकता में वह शक्ति है जिससे इतना भरा देश एक सूत्र में बंधा हुआ है। भारत में विभिन्न देवी देवताओं के मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारे है, गिरिजाघर है तथा अनेक बौद्ध मठ है। इसी पर आधारित हमारे आज की वार्ता है तथा वार्ता का विषय है तवांग की प्राकृतिक सौंदर्य और ऐतिहासिक बौद्ध मठ। तो आइए जानते हैं श्रोताओं, आज मैं आप सभी को रेडियो के माध्यम से इस धरती के एक ऐसे पर्यटन स्थल की सैर कराऊंगी जहां पर सूर्य की पहले किरणें धरती के चरण स्पर्श करते हैं। क्या आप सब जानना चाहेंगी इस खूबसूरत राज्य का नाम? भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में बसा इस राज्य का नाम अरुणाचल प्रदेश है। इसी राज्य के पश्चिमोत्तर दिशा में प्राकृतिक सौंदर्य की गोद में बसा एक जिला जिसका नाम तवांग है। तो सबसे पहले आप सभी को मैं तवांग जिले की खूबसूरती से अवगत करवाती हूँ। तवांग अरुणाचल प्रदेश प्रांत का एक शहर जो तवांग जिले का मुख्यालय है। यह अरुणाचल प्रदेश का एक खूबसूरत इलाका है। अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती देश भूटान तथा चीन है। तवांग एक बड़ा ही खूबसूरत प्राकृतिक सौंदर्य से सजा यह जिला आपको मंत्रमुग्ध कर देगा। यहाँ आपको समतल भूमि बहुत ही कम मिलेगी। एक तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ तो दूसरी तरफ गहरी खाई तथा खाई के बीच से कल कल करती हुई बहती नदी, बड़े बड़े पेड़ पौधे तथा वनों से सजी यह धरती इस कस्बे की खूबसूरती में 4 चांद लगाती है। झरनों की तो बात ही निराली है। दूर से तो ऐसा प्रतीत होता है मानो आसमान से दूध की गंगा बहती हो। सखियों, तवांग नाम लेते ही मेरा मन हर्षोल्लास से भर जाता है। तवांग की सुंदर वादियों से बहुत ही कम लोग परिचित होंगे। यहाँ अधिकतर सर्दी का मौसम रहता है। नवंबर से मार्च महीने तक यहाँ बर्फ गिरता है। बर्फ गिरने के बाद जब सूर्य की किरणें इस धरती पर पड़ती है उस समय बड़ा ही अद्भुत नजारा होता है। ऐसा लगता है मानो सारी धरती पर चांदी की कालीन बिछ गई हो। यहाँ की खूबसूरती को शब्दों में बांध

असंभव है। सखियों, तवांग में बहुत ही पर्यटन स्थल तथा तीर्थ स्थल है। यहाँ हर साल हजारों की संख्या में पर्यटक देश विदेश से भ्रमण करने आते हैं तथा अनेक नई नई अनुभव अपने साथ लेकर जाते हैं। हर तीर्थ स्थल की अपनी सांस्कृतिक विशेषता का महत्व होता है। अब हम तवांग बौद्ध मठ के विषय में जानेंगे। तो सबसे पहले बौद्ध मठ क्या होता है? बौद्ध मठ का अर्थ ऐसे संस्थानों से है जहां बौद्ध धर्म के गुरु अपने शिष्यों को शिक्षा, उपदेश इत्यादि प्रदान करते हैं। भगवान बुद्ध के अनुयायियों के लिए विश्व भर में 5 मुख्य तीर्थ स्थल माने जाते हैं। पहला लुम्बिनी, जहां भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। दूसरा बोध गया, वो स्थान जहां भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। तीसरा सरनाथ, वह स्थान जहां भगवान बुद्ध ने दिव्य ज्ञान देना प्रारंभ किया था। चौथा कुशीनगर, यह वह स्थान है जहां भगवान

पहला लुम्बिनी, जहां भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। दूसरा बोध गया, वो स्थान जहां भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। तीसरा सरनाथ, वह स्थान जहां भगवान बुद्ध ने दिव्य ज्ञान देना प्रारंभ किया था। चौथा कुशीनगर, यह वह स्थान है जहां भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। तीसरा दीक्षा भूमि नागपुर, यह वो स्थान है जहां से भारत में बौद्ध धर्म का पुनरुत्थान हुआ था। आइए आप जानते हैं तवांग शब्द का अर्थ। त का अर्थ है घोड़ा तथा वांग का अर्थ है चुनना, अर्थात घोड़े द्वारा चुना गया यह स्थान। पौराणिक कहानियों के अनुसार यह मठ पांचवी दलाई लामा के निर्देश अनुसार मेरक लामा लोटरिग्याजो ने सन 1680 यानी 1680 में तवांग मठ की स्थापना की थी। वह मठ बनाने के लिए सही जगह निर्धारित नहीं कर पा रहे थे। एक दिन वह गुफा में देवी शक्ति की मदद के लिए प्रार्थना कर रहे थे। जब वह बाहर आए तो उनका घोड़ा खो गया था। बाद में वह घोड़ा एक पहाड़ की ऊंचाई पर मिला। मेरक लामा लोटरिग्याजो ने भगवान का इशारा समझकर उसी स्थान को तवांग बौद्ध मठ बनाने के लिए चुने। तवांग बौद्ध मठ भारत के अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। यह भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ है। यह लासा के पोताला महल के बाद एशिया का दूसरी सबसे बड़ा मठ है। यह तवांग नदी की घाटी में तवांग कस्बे के निकट स्थित है। 340 वर्ष पहले बने इस मठ को बौद्ध भिक्षु अंतर्राष्ट्रीय धरोहर मानते हैं। इस मठ में 570 से ज्यादा बौद्ध भिक्षु रहते हैं। समुद्र तल से लगभग 10,000 फीट की ऊंचाई पर तवांगचू घाटी में बने इस मठ में दुनिया भर से पर्यटक आते रहते हैं। पहाड़ी पर बने होने के कारण तवांग मठ से पूरी घाटी की खूबसूरत नजारा देखे जा सकते हैं। यह मठ दूर से दुर्ग जैसा दिखाई देता है। इसके प्रवेश द्वार का नाम ककलिंग है, जो देखने में अति सुंदर तथा मन भावन है। इसके दो दीवारों के निर्माण में पत्थरों का प्रयोग किया गया है। इन दीवारों पर खूबसूरत चित्रकारी की गई है, जो पर्यटकों को बहुत पसंद आती है। अष्ट धातु से बनी इस मूर्ति की ऊंचाई 28 फीट है। इस मठ को गादन नमगिल हाचे के नाम से भी जाना जाता है। सखियों, इस वार्ता को जारी रखते हुए आइए सुनते हैं एक मधुर सी गीत। गीत की बोल है ओम माने पे मैं हूँ।

आप सबको भी यह गीत जरूर पसंद आई होगी। अब आइए इस वार्ता को जारी रखते हुए आगे बढ़ते हैं। तवांग अपने 340 वर्ष पुराने मठ के लिए प्रसिद्ध है। इस मठ के परिसर में 65 भवन है। यह बौद्ध धर्म के अनुयायियों का महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। शांत और सुंदर तवांग के बौद्ध मठ पूरी दुनिया में मशहूर है। तवांग बौद्ध मठ के परिसर में पाठशाला, पुस्तकालय, संग्रहालय, अस्पताल तथा एक धार्मिक स्तंभ है। इस संग्रहालय में बहुत ही प्राचीन वस्तुओं को संग्रहित करके रखा गया है। इन बहुमूल्य वस्तुओं को बड़े ही सुंदर तरीके से संभाल कर तथा सजा कर रखा गया है। इस संग्रहालय की देखभाल मठ के लामा करते हैं। तवांग मठ के प्रांगण में ही एक भव्य पुस्तकालय है। इस पुस्तकालय में अमूल्य पांडुलिपि पुस्तकें सहेज कर रखा गया है। बड़ा ही अनोखा है यह पुस्तकालय। सचमुच इस तवांग मठ की खूबसूरती को शब्दों में समझाना

संभव है। अति भव्य और अलौकिक इस मठ का सौंदर्य सराहनीय है। बौद्ध मठ के इसी परिसर में लकड़ी से बना बहुत ही लंबा एक धार्मिक स्तंभ है, जिसमें हमेशा एक बड़ा सा झंडा लगा रहता है। आप सभी को यह जानकर आश्चर्य होगा कि पूरे झंडे में कुछ मंत्र लिखा रहता है। यहाँ के लोगों का यह मानना है कि हवा के माध्यम से यह मंत्र पूरे विश्व में शांति प्रदान करता है। यहाँ के लोग पर्व के अवसर पर 5 रंगों के सैकड़ों की मात्रा में झंडे लगाते हैं, जिसे देखकर मन को बड़ा ही सुकून मिलता है। प्राकृतिक सौंदर्य से सजा यह तवांग जिला हर किसी के लिए आकर्षण का केंद्र बिंदु है। तवांग मठ, जिसे हम आज देख रहे हैं, वह आज से लगभग 30 वर्ष पहले पत्थर, मिट्टी और लकड़ी से बना हुआ था, परंतु ऐसी ही चित्रकारी, खूबसूरती, शांत वातावरण पहले भी था और आज भी है। जब मैं पहली बार तवांग बौद्ध मठ में गई थी, तब वहां का शांत वातावरण, मनोरम दृश्य, मन भावन चित्रकारी, कतार में दीपों का जलना सचमुच मन को प्रफुल्लित तथा उमंग से भर दिया था। इस मन भावन चित्र की अपनी अपनी विशेषताएं हैं तथा इसका अलग अलग अर्थ भी है। यह बौद्ध मठ पूरी घाटी का सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक केंद्र बिंदु है। तवांग मठ के अलावा भी यहाँ कई मठ और हैं। इन सभी मठों की अपनी अपनी विशेषता है, तो आइए जानते हैं पहले इन मठों के नाम। अर्गिदुंग मठ, ब्रकर मठ, चंगबू मठ, खरुंग मठ, क्रोमतिन मठ, शक्ति मठ, तरमंग मठ, थोंगमिन मठ, उर्गिलिंग मठ, रिगिलिंग मठ, तकसंग मठ इत्यादि। अब मैं कुछ मठों की विशेषता पर प्रकाश डालूंगी। तो सबसे पहले जानते हैं उर्गिलिंग मठ के विषय में। उर्गिलिंग मठ, इस मठ को 6 दलाई लामा का जन्म स्थल माना जाता है। इस मठ में दलाई लामा के हाथों तथा पैरों के पंजों के निशान एक पत्थर पर स्थित है, जिसे दर्शन के लिए उर्गिलिंग मठ में सुरक्षित रखा गया है। यहाँ लोग बड़े ही उत्साह तथा उल्लास के साथ दर्शन करने जाते हैं। दूसरा, रिगिलिंग मठ। यह मठ हरियाली और शांत वातावरण में स्थित है। यह बैठने, ध्यान लगाने तथा अंतरात्मा की खोज के लिए सबसे अच्छी जगह में से एक है। अब मैं आप सभी को तकसंग मठ की विशेषता की जानकारी देना चाहूंगी। तकसंग मठ, जिसे टाइगर डेन भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ के लोगों के अनुसार जब इनके गुरु पद्म संभाव आए थे, तब एक टाइगर ने ही उनका स्वागत किया था। 3 मंजिला यह मठ बहुत ही सुंदर है। प्रकृति सौंदर्य के मध्य में बना यह टाइगर मठ अत्यंत ही प्रभावशाली है। यहाँ का वातावरण बहुत ही स्वच्छ तथा शांत है। सखियों, इस वार्ता में अगर महिला बौद्ध भिक्षुनी की चर्चा ना की जाए तो यह वार्ता अधूरी सी लगती है। आइए पहले महिला बौद्ध भिक्षुनी की जीवन शैली के बारे में जानते हैं। ये अपनी मर्जी से घर के सुख सुविधाओं को त्याग कर महिला मठ से जुड़ जाती है। उन पर कोई सामाजिक दबाव नहीं होता है। मठ में उन्हें कठिन नियमों का पालन करना पड़ता है। मठ के नियमों के अनुसार सुबह 3 बजे से ही इनकी दिनचर्या शुरू हो जाती है। ध्यान करना, प्रार्थना करना इत्यादि। इनका भोजन शाकाहारी, शादी न करना, सादा जीवन व्यतीत करना। इनका पोशाक परंपरागत मेरून रंग से बने कपड़ों का होता है। मठ के प्रमुख बौद्ध भिक्षुनी को उमजे कहा जाता है। अब आइए जानते हैं कुछ प्रमुख महिला बौद्ध मठों के विषय में। क्यांगोंग महिला बौद्ध मठ, इस मठ को मेरक लामा लोटरी क्याचो ने स्थापित किया था। बाद में उन्होंने अपनी बड़ी बहन को सौंप दिया था। यह मठ तवांग से लगभग 9 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिम दिशा में एक पहाड़ी के ऊपर स्थित है। यहाँ लगभग 50 भिक्षुनी रहती है। इस मठ पर प्रशासनिक नियंत्रण तवांग मठ का रहता है। सिंगसुर मठ, यह मठ

वांग से लगभग 30 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर है। गेशिला रोड में लू गांव के ठीक ऊपर में स्थित है। यहां लगभग 40 से 50 भिक्षुनियों के रहने की व्यवस्था है। यह मठ दान तथा गांव वालों के योगदान से चलता है। पुराने मठ के नजदीक ही नया मठ बनाया गया है। इस मठ पर गांव वालों का नियंत्रण रहता है। ब्रह्मदुंचुंग महिला बोध मठ, यह मठ तवांग मठ से 10 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। इस मठ को 16वीं शताब्दी में लामा कर्चिन येशी गेलेक द्वारा स्थापित किया गया था। यह मठ एकांत स्थान पर स्थित है। यहाँ लगभग 45 से 50 भिक्षुनियों की रहने की व्यवस्था है। इनका जीवन यापन दान तथा श्रद्धालुओं द्वारा चराए गए चरावा पर ही निर्भर होता है। इन्हें तवांग मठ से कोई सहायता नहीं मिलती है। इस वार्ता को जारी रखते हुए आइए अब थोड़ी जानकारी बौद्ध धर्म ग्रंथ के विषय में जानते हैं। बौद्ध धर्म ग्रंथ में पिटकों का बहुत बड़ा स्थान है। भगवान बुद्ध ने अपने हाथों से कुछ नहीं लिखा था। उनके द्वारा दिए गए उपदेशों का उनके शिष्यों ने पहले कंठस्थ किया, फिर लिख लिया। लिखे हुए पन्ने को वे उन्हें पेटियों में रखते थे। इसी तरह से धर्म ग्रंथ का नाम पड़ा पिटक। पिटक तीन है। पहला विनय पिटक, भिक्षु संत के लिए बनाए गए विस्तार से नियम। भिक्षुओं को प्रतिदिन के जीवन में किन किन नियमों का पालन करना चाहिए। दूसरा शुद्ध पिटक, इस पिटक में बौद्ध धर्म के सभी मुख्य सिद्धांत स्पष्ट करके समझाए गए हैं। तीसरा अभिधम्म पिटक, धम्म पद में 26 वग और 423 श्लोक है। बौद्ध धर्म को समझने के लिए अकेला धम्म पद ही काफी है। मनुष्य को अंधकार से प्रकाश में ले जाने के लिए यह प्रकाशमान दीपक है। अहिंसा परमो धर्म, यह हम सभी जानते हैं, परंतु बौद्ध धर्म में अहिंसा का बड़ा महत्व समझाया गया है। एक मंत्र है जो मोनपा समुदाय के लोग प्रतिदिन जपते रहते हैं। उस मंत्र का नाम है ओम माने पेमे हूं। यह एक पाली मंत्र है जिसका संबंध अलोकितेश्वर अर्थात करुणा के बोधिसत्व से है। यह तिब्बत बौद्ध धर्म का मूल मंत्र है। यहाँ के प्रमुख त्योहारों का नाम है सगदवा महोत्सव, तुर्या तथा लोसर। लूनर कैलेंडर के अनुसार सगदवा चौथे महीने की पहली तारीख से मनाया जाता है। सार्वभौमिक रूप से यह माना जाता है कि इसी दिन भगवान बुद्ध ने ज्ञानोदय प्राप्त किया था। बौद्ध लोग बौद्ध धर्म के पवित्र पुस्तक लेकर चलते हैं। तुर्या प्रमुख त्योहारों में तुर्या भी बहुत ही महत्वपूर्ण तथा अहम त्योहार है। इसे हर साल लूनर कैलेंडर के अनुसार 11वें महीने की 28 तारीख से 30 तारीख तक मनाया जाता है। 3 दिन तक इस त्योहार को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ के मोनपा समुदाय के लोग हर साल कई त्योहार मनाते हैं। इन्हीं त्योहारों में एक प्रमुख त्योहार है लोसर। यह पर्व नए साल के उपलक्ष्य में पूरे हर्षोल्लास के साथ फरवरी महीने के दूसरे सप्ताह से मार्च महीने की पहले सप्ताह के बीच मनाया जाता है। 15 दिनों तक चलने वाला यह त्योहार अमावस्या से शुरू होता है तथा पूर्णिमा तक चलता है। इस पर्व में साफ सफाई का बड़ा ध्यान रखा जाता है। लोसर पर्व के इस पावन अवसर पर सभी लोग नए नए कपड़े पहनते हैं। प्रसाद के रूप में तरह तरह की मिठाइयां बनाई जाती है। इनमें से प्रमुख मिठाई का नाम खपसे है। लोसर पर्व के तीसरे दिन मोनपा प्रजाति के लोग अपने अपने घरों के सामने मंत्रों से लिखा झंडे लगाते हैं तथा इसके अलावा 5 रंगों जैसे सफेद, हरा, नीला, पीला तथा लाल रंग के झंडे भी लगाते हैं। इस 5 रंगों के झंडे का अर्थ हमारे शरीर के 5 तत्व से जुड़े हुए है। यहाँ तवांग बौद्ध मठ के अलावा अनेक बौद्ध स्तूप भी है। स्तूप संस्कृत और पाली से लिया गया है जिसका

0: शब्दिक अर्थ मिट्टी का टीला या ढेर होता है, एक गोल टीले के आकार की संरचना है जिसका प्रयोग पवित्र बोध अवशेषों के रखने के लिए किया जाता है। पहले बोध स्तूप भगवान बुद्ध के शरीर के अवशेष रखने के लिए बनाए गए थे। स्तूप भगवान बुद्ध का रूप होता है। तवांग जिले के जिमिथांग अंचल में गोरसम नाम का एक तीर्थ स्थल है जहां बहुत बड़ा एक बोध स्तूप है। वर्ष में एक बार वहां भारी मेला लगता है। भारी मात्र में श्रद्धालु दर्शन करने जाते हैं। तवांग की हरी भरी वादियों में प्राकृतिक सौंदर्य के बीच में बसा यह खूबसूरत तीर्थ स्थल हर किसी को अपनी तरफ आकर्षित करता है। श्रोताओं, बौद्ध धर्म दुनिया का पहला विश्व धर्म है जो अपने जन्म स्थल से निकलकर विश्व में दूर दूर तक फैला। भारत में बौद्ध धर्म अल्पसंख्यक है जबकि भारत में इस विश्व धर्म का उदय हुआ है। श्रोताओं, इस वार्ता को जारी रखते हुए आइए बौद्ध से जुड़ी ज्ञानवर्धक एक कहानी सुनते हैं। एक दिन एक किसान बुद्ध के पास आया और बोला, महाराज, मैं एक साधारण किसान हूँ। बीज बोकर हल चलाकर अनाज उत्पन्न करता हूँ, तब उसे ग्रहण करता हूँ, किंतु इससे मेरे मन को तसल्ली नहीं मिलती। आप मुझे मार्गदर्शन दीजिए जिससे मेरे खेत में अमृतत्व के फल उत्पन्न होने लगे। किसान की बात सुनकर बुद्ध मुस्कुराकर बोले, भले व्यक्ति, तुम्हें अमृतत्व का फल तो अवश्य मिल सकता है, किंतु इसके लिए तुम्हें खेत में बीज न बोकर अपने मन में बीज बोने होंगे। यह सुनकर किसान हैरानी से बोला, प्रभु, आप यह क्या कह रहे हैं? भला मन में बीज बोकर भी फल प्राप्त किए जा सकते हैं? बुद्ध बोले, बिल्कुल हो सकते हैं। किसान ने कहा, प्रभु, तब तो मुझे अवश्य बताइए कि मैं मन में विश्वास के बीज कैसे बोऊं? बुद्ध बोले, तुम मन में विश्वास के बीज बो, विवेक का हल चलाओ, ज्ञान के जल से उसे सींचो और उसमें नम्रता का उर्वरक डालो। इससे तुम्हें अमृतत्व का फल प्राप्त होगा। उसे खाकर तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। बुद्ध से अमृतत्व के फल की प्राप्ति की बात सुनकर किसान की आंखें खुल गई। वह समझ गया कि अमृतत्व का फल सद विचारों के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। इस वार्ता को जारी रखते हुए आइए भगवान बुद्ध के कुछ प्रसिद्ध सुविचारों से आप सभी को अवगत करवाती हूँ। पहला, रास्ता वर्तमान में जियो। दूसरा, क्रोध, आपको क्रोध की सजा नहीं मिलती बल्कि क्रोध से आपको सजा मिलती है। तीसरा, लड़ाइयाँ, आप अपने ऊपर विजय प्राप्त करें। चौथा, लक्ष्य, हजारों शब्दों से अच्छा वह एक शब्द जो शांति लाता है। पांचवा, बुराई, बुराई हमेशा प्रेम को समाप्त करती है। छठा, खुशियाँ, एक जलते हुए दीपक से हजारों दीपक को जला जा सकते हैं फिर भी उस एक दीपक की रोशनी कम नहीं होती। इन्हीं चंद जानकारी के साथ मैं आपकी सखी दुर्जी डोलमा आप सभी से विदा लेते हैं। नमस्कार।
1: श्रोताओं, अभी आपने महिलाओं पर आधारित कार्यक्रम महिला जगत के अंतर्गत दोजी रेमा की आवास में श्रीमती शोभा शर्मा द्वारा लिखित तवांग की प्राकृतिक सुंदरता और ऐतिहासिक बौद्ध मठ के बारे में सुना। इसी के साथ ही यह कार्यक्रम अब यहीं पर समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय शाम के 4:30 हो गए हैं। लीजिए श्रोता, प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम रागरंग। कार्यक्रम रागरंग में आज आप सुनिए निषाद खान से सितार वादन, राग है चांदनी कल्याण। तबले पे संगीत दे रहे हैं शवपद अहमद खान।

श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम रागरम के अंतर्गत निषाद खान से सितार वादन राग था चांदनी कल्याण। तबले पे संग तेरे थे शाफत अहमद खान। ये आकाशवाणी का तांग केंद्र है। समय शाम के 4:45 होने वाले हैं। अब से थोड़ी देर बाद यानी शाम के 4:45 पर आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के टनवर केंद्र से अनुप्रसारित हिंदी में समाचार तथा अंग्रेजी में समाचार 4:55 पर। कृपया थोड़ी देर प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप यारमता सिंह से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। पीएम मोदी ने दूसरी और तीसरी श्रेणी के शहरों में हवाई यात्रा को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना का अगला चरण विकसित उड़ान शुरू किया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज से 10 जुलाई तक कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान की सरकारी यात्रा पर रहेंगे। पीएम मोदी की ऑस्ट्रेलियाई यात्रा से पहले ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री ने भारत को अहम आर्थिक साझेदार बताया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुप्रसिद्ध पंटवानी गायिका तीजन बाई के निधन पर जताया दुख। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह संयुक्त राष्ट्र के एआई गवर्नेंस पर वैश्विक संवाद में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। सरकार ने भूटान के भारत से E20 पेट्रोल आयात का प्रस्ताव ठुकराने के दावे को गलत बताया। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीबीजी रामजी के सफल लागू होने पर आभार जताया। गुवाहाटी में होगी ब्रिक्स देशों की मादक पदार्थ निरोधक एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक। आईसीसी महिला T20 विश्व कप फाइनल में इंग्लैंड का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। फीफा विश्व कप में फ्रांस ने फिलाडेल्फिया में राउंड 16 के मैच में पैराग्वे को कड़े मुकाबले में 1-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। अब क्वार्टर फाइनल में फ्रांस का सामना होगा मोरक्को से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरे और तीसरे श्रेणी के शहरों तथा दूरदराज के क्षेत्रों में हवाई यात्रा को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना का अगला चरण विकसित उड़ान शुरू किया है। श्री मोदी ने कल राजस्थान के जोधपुर हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन किया, जिससे भारत के नागर विमानन ढांचे और क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ावा मिला है। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा है कि विकसित उड़ान योजना के शुरू होने से भारत के क्षेत्रीय संपर्क का अगला अध्याय शुरू होगा। श्री नायडू ने कहा कि 28,840 करोड़ रुपए से ज्यादा के बजट के साथ शुरू की गई यह योजना दूसरे और तीसरे श्रेणी के शहरों में हवाई संपर्क को मजबूत करेगी। उन्होंने कहा कि यह योजना 100 से ज्यादा नए हवाई अड्डों और 200 हेलीपैड के विकास में मदद मिलेगी, जिससे लाखों लोगों के लिए किफायती हवाई यात्रा का सपना साकार होगा। जोधपुर हवाई अड्डे पर श्री नायडू ने कहा कि इस विश्व स्तरीय सुविधा से मारवाड़ क्षेत्र में हवाई संपर्क मजबूत होगा और साथ ही राजस्थान में पर्यटन, व्यापार और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज से 10 जुलाई तक कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान की सरकारी यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान डॉ जयशंकर इन देशों के विदेश मंत्रियों और नेताओं से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि इस यात्रा का उद्देश्य इन देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना और क्षेत्रीय घटनाक्रमों तथा पारस्परिक हित के मुद्दों पर विचार विमर्श करना है। ओमान के बाद डॉ जयशंकर 13 जुलाई को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 2028-29 कार्यकाल के लिए भारत का अभियान शुरू करेंगे। इसके बाद वे 14 और 15 जुलाई को ब्रुसेल्स में तीसरी भारत यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद की बैठक में भाग लेंगे और यूरोपीय संघ तथा बेल्जियम के विदेश मंत्रियों के साथ बातचीत करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगामी ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले भारत को एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार बताया है। एक बयान में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा है कि विश्व की चौथी सबसे बड़ी और सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में भारत ऑस्ट्रेलिया के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार है। श्री अल्बनीज ने कहा कि हमारे संबंध व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर आधारित है तथा गहरे आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों से समर्थित है। उन्होंने कहा कि व्यापार, रक्षा, सुरक्षा और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग दोनों देशों के लिए लाभकारी साबित हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के संबंध पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है और यह साझेदारी हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देती है। बयान में कहा गया है कि दोनों नेता मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया भारत वार्षिक नेता शिखर सम्मेलन में मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री अल्बनीज ने पिछली बार नवंबर 2025 में जोहान्सबर्ग में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 3 देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा पर जा रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी

तिमुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई के निधन पर दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति मुर्मू ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि तीजन बाई ने महाभारत की कहानियों को अपनी सशक्त आवाज, रोबदार व्यक्तित्व तथा अद्भुत शैली की प्रस्तुति के साथ मंच पर जीवंत बनाया। राष्ट्रपति ने कहा कि तीजन बाई ने अपनी असाधारण प्रतिभा, समर्पण और वर्षों के कठिन अभ्यास के जरिए छत्तीसगढ़ की समृद्ध पंडवानी परंपरा को भारत तथा विदेश में प्रतिष्ठा दिलाई। उन्होंने कहा कि भारत की सांस्कृतिक विरासत के प्रसार के प्रति उनका योगदान अविस्मरणीय रहेगा। उपराष्ट्रपति ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि तीजन बाई ने अपने अद्भुत आवाज, सशक्त प्रदर्शन और असाधारण कला कौशल के जरिए भारत की समृद्ध लोक सांस्कृतिक परंपराओं, विशेषकर महाभारत की कालजयी कहानियों को जीवन के हर क्षेत्र के लोगों तक पहुंचाया। श्री राधाकृष्णन ने कहा कि उनका निधन कला और संस्कृति जगत के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि उनकी संवेदना उनके परिवार, शिष्य, असंख्य प्रशंसकों और छत्तीसगढ़ के लोगों के साथ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अपने शानदार प्रदर्शनों के जरिए तीजन बाई ने छत्तीसगढ़ की लोक कला शैली के लिए वैश्विक पहचान अर्जित की। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनका निधन कला और संस्कृति जगत के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह कल से जिनेवा में एआई गवर्नेंस पर संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक संवाद में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि एआई गवर्नेंस पर वैश्विक संवाद एक सार्वभौमिक बहुहितधारक संयुक्त राष्ट्र मंच है, जिसकी स्थापना महासभा के एक संकल्प के अंतर्गत की गई है। यह भविष्य के समझौते के अंतर्गत अंतर्गत सितंबर 2024 में अपनाए गए वैश्विक डिजिटल समझौते के बाद स्थापित किया गया है। मंत्रालय ने कहा कि यह वैश्विक संवाद एआई के अंतर्राष्ट्रीय संचालन को आगे बढ़ाने का एक अनूठा अवसर है, जो अंतर्राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और बहुहितधारक प्रयासों का पूरक है। वैज्ञानिक समाज, पारदर्शिता, जवाबदेही और मजबूत मानवीय निगरानी को बढ़ावा देने वाले स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक पैनल के साथ मिलकर यह संवाद विशेष रूप से विकासशील देशों में क्षमता निर्माण में मदद करेगा, ताकि एआई प्रणालियों को सतत विकास की दिशा में निर्देशित किया जा सके। पिछले वर्ष अगस्त में अपनाई गई कार्य शर्तों और तौर तरीकों के अनुरूप सह अध्यक्षकों ने कई हितधारक परामर्श भी आयोजित किए थे, जिनमें इस वर्ष फरवरी में नई दिल्ली में आयोजित एआई प्रभाव सम्मेलन के दौरान आयोजित एक व्यक्तिगत परामर्श भी शामिल था। जिनेवा में आयोजित होने वाले दो दिवसीय वैश्विक एआई संवाद में एआई पर स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक पैनल की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी, जो एआई की क्षमताओं, उभरते अवसरों और जोखिमों का पहला स्वतंत्र वैज्ञानिक मूल्यांकन प्रदान करती है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर उन खबरों को भ्रामक और गलत बताया है, जिनमें यह दावा किया गया है कि भूटान ने भारत से E20 पेट्रोल आयात करने का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। मंत्रालय ने कहा कि भूटान को E20 पेट्रोल निर्यात करने का कोई प्रस्ताव नहीं दिया गया है। मंत्रालय ने नागरिकों से केवल मंत्रालय और तेल विपणन कंपनियों से मिली आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करने का आग्रह किया है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस महीने की पहली तारीख से विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण VBG रामजी अधिनियम 2025 सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। श्री सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की मुख्य सहायता राशि जारी की। श्री चौहान ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ VBG रामजी योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा भी की। उन्होंने कहा कि आज जारी की गई पहली किश्त का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि राज्य के पास पर्याप्त धनराशि हो, ताकि मजदूरी का भुगतान 15 दिनों के भीतर किया जा सके। उन्होंने कहा कि मनरेगा को लागू होने में 3 साल से ज्यादा का समय लगा था, जबकि विकसित भारत जी राम जी को पूरे देश में सिर्फ 1 दिन में लागू कर दिया गया। श्री चौहान ने कहा कि विकसित भारत के विजन को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए इस अधिनियम के तहत अगले 5 सालों में 2,86,000 पंचायतों में 7.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश किया जाएगा। उन्होंने कहा कि VBG रामजी योजना के तहत मजदूरी दरों में औसतन लगभग 10% की वृद्धि की गई है। उन्होंने आगे कहा कि अब देश के किसी भी राज्य में मजदूरी दर 300 रुपए प्रतिदिन से कम नहीं होगी। श्री चौहान ने आश्वासन दिया कि VBG रामजी के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए धन की कोई कमी नहीं होगी। पारदर्शिता और जवाबदेही पर जोर देते हुए मंत्री ने कहा कि चेहरा प्रमाणीकरण, जियो टैगिंग और अन्य तकनीकी उपायों को पूरी तरीके

0: multi-stakeholder UN forum established under General Assembly Resolution 79/325 following the Global Compact adopted as part of the Pact of the Future in September 2024. That's all in this news bulletin. Namaskar.
1: मीडियम वेव किलोहर्ट्ज के चिन्ह ने खेली थी मीटर यानी के बीच चिन्ह का लंगे नाशा उत्लेरिम आकाशवाणी तवंग श्योदुम्बर लंगे छमुनुप्तिक छुजे लेंग होनी लंगे नादा आकाशवाणी तवंग देशनुप्तिक मन पख लेरिम बानंग गोचोदुर लेरिम संगन लंगे छमुशा नादा चे कोंजो संगे सि छमरी टेसी दिलक श्योदु देश छिलुंग नितोंग खलि ग्रोलोक छिंदा दुन बख तरिक लेंगे बोय गेलो नितोंग क्यानिंग खेनि चिक्सुम नामलो मेतालोक दवांग आपक छेस खेली रेज निमी इंबुर लांगे नंग आकाशवाणी तवांग लेरिम बानंग एफएम फ्रीक्वेंसी कैनिंग ब्ली मेगा हर्ट्स कए सनमी तों इंबुर लांगे ना दा देशिक मोनपी लेरिम गोदाप नमदर लेरिम जित कोचुदुर तेचुस लेरिमा गेसे छेनपो शिवलसी जे नंगु चेंजु छेनमो तुलको तेंजिन गुरमे रिम्बुचे सी मोनकेट का गुरिया जेशि नंगु तंगसन मेजिक थोर तामुथुई सन्नंगसा
2: यार दिग्बे लगा लाया को ना मुझे ता दिग्बे लगा ओरे ला दिग्बे लगा या को ये ना इसी के ठेबुचे तादा मिसे का मेन्यू में ओरे ता उत चलो जी किन में ओरे ला उत तू का नहीं बे उत तू का नहीं या ता तादा धुंधुप से निशा कौन से या निशा दुक्चा दे या को ये ना ता समलो कहना तुम उस लो ने ओ ता धुंधुप से निशा कौन से या निशा नेवा या को ची ता ठी या ना ची ना ना ना ना ना ठी का ने धुंधुप से थोड़े या को ये ने ठी ता ओरे Dundrupsha Thor Gyundi Nebade Yago Yine Tineda. Na Yago Jig Dibuji, Dada Nganangsha Minya, Da Nganangsha Leigi Dibuji Mindu Mnye Samlo Tong Osumni. Da Samlo Tong Esimne Nga Gawa Gomu Osumni. Oh, Da Nambar Da Gwara Yi, Deshi Dundrupsi Nishi Khonsi Ya, Dukja Yago Chi Nambar Da Gwara Yi, Gaya Nambar Da Gwara Yi Na, Na Nganang Dikbati Da Munu Shonsar Nida. Da Dibumen Sarume, Dibumen Na Dikbaji Chapter Close Yime Da. ओ दा दिबति न्युशोगे दिबति दबो खर्चर दा दिबति न्युशोगे नि सिमकाव गो मोसुमि ओ दो दा समनो थों ये ना खोंजि गो दा थोरनि या दा दे गेवा शर्मा से रांसे खोंजि गो ये ना थोर लेन बि यु दा थोरनि या दा दे रांसे तब गेवा लागो दे थब जु गो गब ने मेरे ओ नो दो खोंबा से बे नि दा जि गुन छे सिम जेन ला मिन देन दे वा ये ने वा छे नि दा कि ने ना दा नि मना से ने ओरे ला गुन छे ये ना ना गुन छे ये ना से ना ना ना बत छे Simjian Lanyan, Simjian Manasha. The Rans said, Naman Nama Simjian Manasha. The Java never changed, Tata Tsuru Mission Massi never Kayatiadu in Orela, Missi Ransha Kuniadu, Yang Ladan Lu, Sumala, Uden de Tru, Yaguine, Ransha never Yaguina, Kamu, Samloji, Doya, Samotong Osumi, Oh, Tata Tsuru, Si Yagoji, Nang Anasa Torda, Mambu de Yatsarum, Yu Samotong Osumi, The Java neverji. Dewi semjin sejeba dalam neba dijongres. Tak tur neba yaku, tur neba kisu, lenung atau tika, tak dada suruh ngan yang anasha neba udna kabu im ni sama tong osum ni. Pena dada na susu atau tujuan ngar mimisen yang aje neba lah. Udin de suruh ina aje lain bur, luin bur, zen bur, orila sabda shibda udin de neba babdin iya ta, udin de neba lah tong osu. Never to walk Krim Lauden to Nakanaga, Nom Shinde, never Nakam, never the Utumo de Rasuina, Chanju Sem Comia, Chanju Sem Hanam de Comia, Birkambu, Sing Tadang Nishan never Yago Suji, Nada, Anansa Tor Birshan never Yaya. Tata Surbi, Bi Tiaduina, Nanator, Yaluya, Manshu Yagum Neda. Ijig Jumsensi, Tata Sur Bulung or the Orela, Ijig Rasuim, Yasama Tongina. Yang Navachin and Mono Shonjo, Pendonomni, to gain your room, she said, would take an anime. Young Tadana, she saw the Neva Lara Suina. Oh, that Neva Yaginche, that La Lu J Simbo, Cadindi in a Pina Simga Gosuji, Bishaki to the Gosum Neda, Orella, Pina Simbu Simosi in a Bisha, number that was the Gosum, the Billy Simning at the contra de nomine, Brisame Yome, Orella, Birchanju Semade Menome. Armingo, soja shamanime, biri semnenga control de nomni. The biri control go control gagaya. Benambasha, Ramono yaya, Marshanovacetum ninji, yambisha ninji go mosumi. Udmodo yaya, brebrega samotomoina, yang harusnya nebala udende mabab jo.

लामा रिंजन थेवांग द्वारा लामा छोपा का शेष भाग तथा अनि लुपसांग सयांग और अनि लुपसांग सेतुन से शेदुन। आज शाम 7 बजे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित हिंदी में समाचार तथा अंग्रेजी में समाचार 7:05 पर, शाम 7:10 पर साप्ताहिक कार्यक्रम महफिले कवाली, इसके अंतर्गत आज आप सुन पाएंगे अल्लामा इकबाल के आवाजों में चंद पारंपरिक कवाली। शाम 7:25 पर कार्यक्रम सामुदायिक गीत एवं गीत पाठ, इसमें आज आप सुन पाएंगे लेखक रमेश वलस्कर द्वारा रचे कोंकणी भाषा में एक गीत। आज शाम 7:45 पर आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से अनुप्रसारित प्रादेशिक समाचार तथा रीजनल न्यूज 7:50 पर। शाम 7:55 पर कार्यक्रम देशभक्ति गीत में सुन पाएंगे लता मंगेशकर और आदिनाथ मंगेशकर की आवाजों में एक देशभक्ति गीत। आज रात्रि 8 बजे कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत में आप श्रोता द्वारा व्हाट्सएप के जरिए फरमाइश किए गए चंद सदाबहार पुराने गीत आनंद ले पाएंगे। रात्रि 8:30 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित स्पोर्ट्स स्किन, तत्पश्चात समाचार संध्या 8:45 पर तथा न्यूज 8 रात्रि 9 बजे। तो श्रोताओं, ये थे हमारे केंद्र से आज शाम प्रसारित किए जाने वाले शेष कार्यक्रमों की जानकारियां। आइए अब आपको कल यानी 6 जुलाई 2026 को प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों से अवगत करवाते हैं। रोजाना की तरह हमारा सभा आरंभ होगा कल दोपहर 2 बजे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित मिड डे न्यूज के साथ तथा 2:15 पर दोपहर समाचार। कल दोपहर 2:30 पर भक्ति गीत का कार्यक्रम वंदना, इसमें कल आप सुन पाएंगे चंद शिव भक्ति गीत। कल दोपहर 3 बजे विभिन्न प्रांत का कार्यक्रम प्रदेशी संगीत, इसके अंतर्गत कल आप सुन पाएंगे गायक अरुण जमतय, जसवा हलम, प्रियंका और साथियों द्वारा चन आधुनिक कोकपरक गीत। कल दोपहर 3:30 पर दैनिक कार्यक्रम मेरी बात, इसमें कल आप सुन पाएंगे पीएम श्री जेनवी तवांग के विज्ञान की छात्र तेंजिन झुकी से एक वार्ता। कल दोपहर 3:33 पर महिलाओं पर केंद्रित फिल्म संगीत का कार्यक्रम नारी संगीत में आनंद ले पाएंगे हेना फिल्म से मोहम्मद अजीज और लता मंगेशकर, एक दीवाना था फिल्म से सुजैन डिमेल्लो और लियोन डिसूजा, फिल्म लेडीज वर्सेस रिक्की बहल से शिल्पा राव, वीरजारा फिल्म से लता मंगेशकर और टाइगर जिंदा है फिल्म से ज्योति नूरन की आवाजों में चंद फिल्मी नगमे। कल दोपहर 3:50 पर आधुनिक हिंदी फिल्मी गीत का कार्यक्रम गीत मंजरी, इसके अंतर्गत कल आप आनंद ले पाएंगे लैला मजनू फिल्म से अतीब असलम और ज्योतिका तंगरी, रामाया वस्तवय फिल्म से अतीब असलम और श्रेया घोषल, थ्री इडियट्स फिल्म से शान और शंतनु मोत्रा, एक विलन फिल्म से अंकित तिवारी और अरिजीत सिंह, एक पहली लीला फिल्म से उज्जैर जायसवाल, फिल्म वीर से राहत फतेह अली खान और सुजैन डिमेल्लो और फिल्म वांटेड से शान और श्रेया घोषल की आवाजों में चंद आधुनिक हिंदी फिल्मी गीत। कल शाम 4:30 पर शास्त्रीय संगीत

मीडियम वेव 197.2 मीटर अर्थात 1521 किलो हर्ज और 7104 एफएम मेगा हर्ज पर ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय संध्या के 6:10 हो गए हैं। लीजिए श्रोताओं, प्रस्तुत है कार्यक्रम जरोखा। कार्यक्रम जरोखा में आप सुन पाएंगे हमारे केंद्र से आज शाम प्रसारित किए जाने वाले शेष कार्यक्रम व कल प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की जानकारियां। तो आइए श्रोताओं, पहले आपको आज के शाम प्रसारित किए जाने वाले शेष कार्यक्रमों से अवगत करवाते हैं। अब से थोड़ी देर बाद यानी संध्या के 6:20 पर मोनपा कार्यक्रम जदुम नेरिम में सुन पाएंगे लामा मेदो तशी और

का कार्यक्रम रागरंग शाम 4:45 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से अनुप्रसारित हिंदी में समाचार तथा अंग्रेजी में समाचार 4:55 पर कल शाम 5 बजे मोनपा कार्यक्रम नमथलेरिम 5:30 पर दैनिक मुख्य सूचना मोनपा में शाम 5:35 पर कार्यक्रम थोतन लपछा शाम 6 बजे कार्यक्रम नेरिमसेरा 6:10 पर कार्यक्रम जरोखा कल शाम 6:20 पर मोनपा कार्यक्रम शेदुन लेरिम इसके अंतर्गत कला आप सुन पाएंगे तवांग मठ के रिम्बुछे और बिक्षुओं द्वारा शेदुन ग्यावे शप्तन सेमे योन्तन तन बर्मा डेंगदिर मोल्लम और गोबा मल्लम तथा डीसी कार्यालय के श्रीमती चिटिमजांगमो और साथियों द्वारा शेदुन क्युंचक सुम्पा ग्यावे शप्तन ड्रोछो मरमे मोल्लम चंद्रजिक तोयपा और गोबा मल्लम कल शाम 7 बजे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित हिंदी में समाचार तथा अंग्रेजी में समाचार 7:05 पर कल शाम 7:10 पर साप्ताहिक कार्यक्रम ग्रामीण प्रसारण इसके अंतर्गत कल आप सुन पाएंगे कृषि विज्ञान केंद्र तवांग के डॉक्टर अभिमन्यु चतुर्वेदी के साथ हुए एक भेंटवार्ता भेंट करता रहेंगे सुखशीत थोरजीडेमा कल शाम 7:30 पर कार्यक्रम फौजी भाइयों के लिए फिल्म संगीत इसके अंतर्गत कल आप सुन पाएंगे रिफ्यूजी फिल्म से सोनू निगम और अलका याग्निक और फिल्म अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों से उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में चंद फिल्मी नगमे कल शाम आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से अनुप्रसारित प्रादेशिक समाचार 7:45 पर तथा 7:50 पर रीजनल न्यूज कल शाम 7:55 पर कार्यक्रम देशभक्ति गीत में सुन पाएंगे वीर ज़ारा फिल्म से लता मंगेशकर उदित नारायण गुरदास मान और प्रीता मजुमदार की आवाजों में एक देशभक्ति गीत रात्रि 8 बजे कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत में आनंद ले पाएंगे आप श्रोता द्वारा व्हाट्सएप के जरिए फरमाइश किए गए चंद सदाबहार पुराने नगमे रात्रि 8:30 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित स्पोर्ट्स स्कैन तत्पश्चात समाचार संध्या 8:45 पर तथा न्यूज 8 रात्रि 9 बजे तो श्रोताओं ये थे हमारे केंद्र से कल प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की जानकारी इसी जानकारी के साथ कार्यक्रम जरूखा यहीं पर समाप्त हुआ ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है समय संध्या के 6:20 होने वाले हैं हमारा अगला कार्यक्रम आप सुन पाएंगे मोनपा में कृपया थोड़ी देर प्रतीक्षा करें।

उच्च आकाशवाणी तवांग इंबर लाइन छाम नुप्ति छु जे ग्रोकनि कर्म खलियोनी लाइना दा देशिक सेदन लेरिम चित कोचुदुर लाइना देशु लेरिमा लाम मेतो ताशी लाम रिंजिन सेवांग आनी लोपसंग छेंग निंग आनी लोपसंग सेटोन बासी दोनों लाम छेपा तंग सेदन लेरिमा सनमेचिक थोर दा मुधि सन्नासा

我把张张把人家把来准备错了早把面包一起给你，要做什么人？我妈问我妈。

ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण 2025 के 1 जुलाई से सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। केंद्रीय मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रूपये की सहायता राशि जारी की। उन्होंने कहा कि मनरेगा को लागू होने में 3 साल से अधिक का समय लगा था, जबकि विकसित भारत जी राम जी को पूरे देश में सिर्फ 1 दिन में लागू कर दिया गया। सरकार ने तरल प्राकृतिक गैस LNG की आपूर्ति से आपातकालीन पाबंदियां हटा ली हैं। यह निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष में युद्ध विराम के बाद हॉर्मुज जलडमरू मध्य से प्राकृतिक

0: प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर से शुरू करने के बाद किया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि प्राकृतिक गैस आपूर्ति नियमन आदेश 2026 में संशोधन किया गया है। इसी बीच पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने वैश्विक तेल बाजार की स्थितियों की समीक्षा के लिए आयोजित वर्चुअल बैठक के बाद इस वर्ष अगस्त से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। आज हुई बैठक के बाद जारी बयान में तेल उत्पादक समूह ने कहा कि यह निर्णय बाजार स्थिरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिया गया है। सरकार ने सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम पर शुल्क वाले विज्ञापनों में बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री के प्रसार को लेकर मेटा को कड़ी चेतावनी जारी की है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार सरकार ने इंस्टाग्राम को ऐसे विषय वस्तु को बढ़ावा देने और इसकी पहुंच को सुगम बनाने वाले सभी विज्ञापनों और सामग्री को बंद करने का आदेश दिया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मेटा से 7 दिनों के भीतर विस्तृत स्पष्टीकरण मांगा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया यात्रा दोनों देशों के बीच मौजूदा संबंधों को मजबूती प्रदान करेगी और सहयोग के नए क्षेत्रों के द्वार खोलेगी। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने विनाशकारी भूकंप के बाद सहायता के लिए भारत का आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में सुश्री रोड्रिगेज ने कहा कि ब्रिटेन, कतर, फ्रांस, भारत, बारबाडोस, ब्राजील और अर्जेंटीना के बचाव कर्मियों को उनके अमूल्य योगदान और संकट की इस घड़ी में एकजुटता प्रयासों के प्रति वेनेजुएला सम्मान व्यक्त करता है। भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े के उदयगिरी शक्ति और कवरत्ती युद्धपोत ने सिंगापुर के चांगी नौसैनिक अड्डे का दौरा पूरा कर लिया है। यह दौरा भारतीय नौसेना की परिचालन तैनाती का हिस्सा था। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि यह दौरा भारत और सिंगापुर के बीच बढ़ती समुद्री साझेदारी में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों का एक दल आज से 11 जुलाई तक कर्नाटक के दौरे पर है। इसका उद्देश्य राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठकें करना और प्रमुख योजनाओं के प्रगति और कार्यान्वयन का आकलन करना है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर कुछ व्यक्तियों द्वारा व्यापार, प्रवासन और अन्य नीतिगत मामलों पर मंत्रालय को सलाह देने संबंधी दावों का खंडन किया है। विदेश मंत्रालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि ये सोशल मीडिया हैंडल मंत्रालय के साथ काम करने के तरीकों पर सशुल्क सलाह के साथ साथ सत्र भी आयोजित कर रहे हैं। इकाई ने स्पष्ट किया कि इन व्यक्तियों का विदेश मंत्रालय से कोई संबंध नहीं है। महाराष्ट्र में तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित है। अधिकारियों ने लोगों को मॉनसून के दौरान नदियों, जलप्रपातों और अन्य जल निकायों से दूर रहने की सलाह दी है। मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़ और रत्नागिरी सहित कोंकण जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। और फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में आज ब्राजील का सामना नॉर्वे से होगा। यह मैच भारतीय समय अनुसार रात डेढ़ बजे से न्यूजर्सी में खेला जाएगा। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar met Qatar Prime Minister and Foreign Minister Mohammed bin Abdul Rahman bin Rasim Al Thani in Doha today. Both the leaders reviewed various facets of bilateral cooperation, especially energy, trade, investments, connectivity, security and people-to-people ties. In a social media post, External Affairs Minister said the two leaders explored new opportunities for deepening the strategic partnership. Union Minister of Agriculture and Rural Development Shivraj Singh Chauhan today released the first installment of over 25,000 crore rupees to the states under Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission Grameen. Mr. Chauhan also reviewed the implementation of the scheme with rural development ministers of all states and union territories. He said the first installment released today

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय शाम के 7:11 हो गए हैं। लीजिए श्रोताओं, पेशे कार्यक्रम महफिले कवाली। इसमें श्रोता आज आप सुनिए अल्लामा इकबाल से पारंपरिक कवाली।

0: श्रोताओं, अभी आपने कार्यक्रम महफिले कवाली में अलमा इकबाल से पारंपरिक कवाली सुना। अब यह कार्यक्रम यहीं पर समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय शाम के 7:25 हो गए हैं। लीजिए श्रोताओं, प्रस्तुत है साप्ताहिक कार्यक्रम समुदाय गीत एवं गीत पाठ। इस कार्यक्रम में आज आप सुनिए लेखक रमेश होलिस्कर के लिखे बोल पर माया सुखथनकर की आवाज में कोंकणी भाषा में एक गीत।
1: बच्चों, आज हम आपको कोंकणी में एक गीत सिखाएंगे। आज हमारे साथ माया जी आई हैं, वे आपको ये गीत सिखाएंगे। आपको पता है ये गीत किसने लिखा है? ये गीत लिखा है श्री रमेश वेलुस्कर जी ने और संगीत दिया है श्री सोमनाथ चारी ने। यह रचना राग किरवानी पर आधारित है। अच्छा बच्चों, पहले कागज पेंसिल निकालो और गाना लिख लो। शुरू करें। हिमगिरी रे, हिमगिरी रे, दो बार हिमगिरी रे, हिमगिरी रे, उत्तुंग तू, मुक्त तू, उत्तुंग तू, मुक्त तू, हिंद

0: अये हिंद भुये मुकुट तू, हिंद माये हिंद भुये मुकुट तू। फिर से हिमगिरि रे हिमगिरि रे। अब ये पहला अंतरा, मुक्त तुझे हड्डे आनी, मुक्त तुझे माथे, मुक्त तुझे हड्डे आनी, मुक्त तुझे माथे, निळ्या मळबा कडे आसा तुझे नाते, निळ्या मळबा कडे आसा तुझे नाते। और फिर से हिमगिरि रे हिमगिरि रे। अब ये दूसरा अंतर, मुक्त तुका चोन हावी जाता मुक्त, मुक्त तुका चोन हावी जाता मुक्त, आनीक वठार जुळटा मुक्तताये सुक्त, आनीक वठार जुळटा मुक्तताये सुक्त। और फिर से हिमगिरि रे हिमगिरि रे। अब ये तीसरा और आखिरी अंतरा, धीरे तुझे हड्डे आनी, धीरे तुझे हड्डे आनी, धीरे तुझी शान, धीरे तुझी शान। देखो, धीरे तुझे हड्डे आनी, धीरे तुझी शान, काळजानी ह्या फुलचो, काळजानी या फुलचो हिंद अभिमान, हिंद अभिमान। और फिर से हिमगिरि रे हिमगिरि रे। अच्छा बच्चों, आपने इस गीत को ठीक तरह से लिखा है ना? अब इस गीत को किस प्रकार गाना है ये आपको माया जी सिखाएंगी।
1: बच्चों, ये गीत दीपचंदी ताल में निबद्ध है। इसका ठेका इस प्रकार है, धा धिन धा धा तिन ता तिन धा धा धिन, एक दो तीन एक दो तीन चार, एक दो तीन एक दो तीन चार। गाने की पहली पंक्ति लड़के और लड़कियां दो भिन्न प्रकारों में गाएंगे और दूसरी पंक्ति सब मिलकर दो भिन्न प्रकारों में एक साथ प्रस्तुत करेंगे। प्रथम लड़कियां,

श्रोताओं, इस हिमगिरी रे गीत के साथ ही साप्ताहिक कार्यक्रम समुदाय गीत एवं गीत पाठ अभी पर समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय शाम के 7:45 होने वाले हैं। हमारा अगला कार्यक्रम आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से अनुप्रसारित प्रादेशिक समाचार 7:45 पर तथा रीजनल न्यूज 7:50 पर। कृपया थोड़ी देर प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ में यरमता सिंह। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस महीने की पहली तारीख से विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन VBG रामजी अधिनियम 2025 सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। श्री सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपये की मुख्य सहायता राशि जारी की। श्री चौहान ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ VBG रामजी योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा भी की। उन्होंने कहा कि आज जारी की गई पहली किस्त का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि राज्यों के पास पर्याप्त धनराशि हो ताकि मजदूरी का भुगतान 15 दिनों के भीतर किया जा सके। उन्होंने कहा कि मनरेगा को लागू होने में 3 साल से ज्यादा का समय लगा था, जबकि विकसित भारत जी रामजी को पूरे देश में सिर्फ 1 दिन में लागू कर दिया गया। श्री चौहान ने कहा कि विकसित भारत के विजन को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए इस अधिनियम के तहत अगले 5 सालों में 2,86,000 पंचायतों में 7.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश किया जाएगा। पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष में युद्ध विराम के बाद हरमूज जल डमरू मध्य से लिक्विडिफाइड नेचुरल गैस की सप्लाई फिर से शुरू हो गई है, जिसके बाद सरकार ने नेचुरल गैस की सप्लाई पर लगी इमरजेंसी पाबंदियां हटा ली है। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन में कहा कि नेचुरल गैस सप्लाई रेगुलेशन ऑर्डर 2026 में संशोधन किया गया है। इस संशोधन के तहत उन खास इमरजेंसी प्रावधानों को हटा दिया गया है जिनके तहत सरकार को देश में

0: उत्पादित नेचुरल गैस और आयातित एलएनजी के आवंटन में प्राथमिकता देने की इजाजत थी। हरमूस जल डम्बू मध्य से एलएनजी की सप्लाई में रुकावट आने के बाद इस साल मार्च में आवश्यक वस्तु अधिनियम एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के तहत यह इमरजेंसी आदेश जारी किया गया था। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज से 10 जुलाई तक कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान की सरकारी यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान डॉ जयशंकर इन देशों के विदेश मंत्रियों और नेताओं से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यात्रा का उद्देश्य इन देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना और क्षेत्रीय घटनाक्रमों तथा पारस्परिक हित के मुद्दों पर विचार विमर्श करना है। ओमान के बाद डॉ जयशंकर 13 जुलाई को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 2028-29 कार्यालय के लिए फिर से सुने 29 कार्यकाल के लिए भारत का अभियान शुरू करेंगे। इसके बाद वे 14 और 15 जुलाई को ब्रुसेल्स में तीसरी भारत यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद की बैठक में भाग लेंगे और यूरोपीय संघ तथा बेल्जियम के विदेश मंत्रियों के साथ बातचीत करेंगे। राज्य सरकार ने कल लोअर सियांग जिले के बाढ़ प्रभावित कोयू सर्कल में एक बड़ा हवाई राहत अभियान चलाया। इसके तहत आपदा से निपटने की अपनी कोशिशों के हिस्से के तौर पर 11.5 मीट्रिक टन चावल एयरलिफ्ट किया गया और 4 मरीजों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। यह अभियान लोअर सियांग जिले के जिला उपायुक्त की मांग पर मुख्यमंत्री पेमा खांडू की अगुवाई में और मुख्य सचिव की देखरेख में नागरिक उड्डयन विभाग द्वारा चलाया गया। विभाग ने राज्य द्वारा किराए पर लिए गए स्काईवान MI-172 हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते हुए पासीघाट से कोयू के बीच 4 उड़ानें भरी और अचानक आई बाढ़ से कटे गांव तक 11.5 मीट्रिक टन वजन के चावल के 230 बोरे पहुंचाए। राहत उड़ानों से पहले तय लैंडिंग जोन का जायजा लेने के लिए एक ट्रायल फ्लाइट भी की गई। जरूरी खाने पीने का सामान पहुंचाने के अलावा हेलीकॉप्टर ने इलाज के लिए 4 मरीजों को कोयू से पासीघाट भी पहुंचाया। मौसम विज्ञान केंद्र ईटानगर MCI ने ईस्ट कमेंग, लोअर सुबनसिरी, पापुमपारे, अपर सुबनसिरी, लोहित, नमसाई, चांगलांग, तिराप और लोंगडिंग जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में कुछ जगहों पर बिजली कड़कने के साथ आंधी तूफान आने की संभावना है। ICC महिला T20 वर्ल्ड कप का फाइनल आज लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया ने सेमीफाइनल में वेस्ट इंडीज को हराकर फाइनल में अपनी जगह पक्की की, जबकि इंग्लैंड ने गुरुवार को दक्षिण अफ्रीका को हराकर लगातार 6वीं जीत दर्ज की और चैंपियनशिप के फाइनल में अपनी जगह बनाई। फिलाडेल्फिया में खेले गए फीफा वर्ल्ड कप के राउंड 16 मुकाबले में फ्रांस ने पराग्वे को कई मुकाबले में 1-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। वीडियो असिस्टेंट रेफरी द्वारा फ्रांस को स्पॉट किक दिए जाने के बाद कप्तान किलियन एम्बापे ने 70वें मिनट में पेनल्टी स्पॉट से मैच का एकमात्र गोल किया। अब क्वार्टर फाइनल में फ्रांस का मुकाबला मोरक्को से होगा। इसी के साथ समाचार बुलेटिन यही समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: This is Akashvani Itanagar, the news read by Apu Gapak. Union Minister of Rural Development Shivraj Singh Chauhan has expressed happiness that the Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission Grameen VBG Ramji Act 2025 has successfully come into force on the 1st of July. The minister today released the first installment mother sanction of over 25,000 crore rupees to the states under the mission through video conferencing. Chauhan also reviewed the implementation of VBG Ramji with rural development ministers of all states and union territories. He said that the first installment released today is aimed at ensuring that states have adequate funds so that wages can be paid within 15 days. The minister said that VBG Ramji Act has successfully transitioned from the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme. He said that the implementation of MG Narega took over 3 years, while the VBG Ramji was implemented across the country only in a day. Chauhan said that under this act, over 7.5 lakh crore rupees will be invested in 2.86 lakh panchayats in the next 5 years to accelerate the vision of Viksit Bharat. Government has withdrawn the emergency curbs on natural gas supplies after liquefied natural gas LNG shipments through the Strait of Hormuz resumed following a ceasefire in the West Asia conflict. In a notification, Ministry of Petroleum and Natural Gas said the natural gas

श्रोताओं, अभी आपने कार्यक्रम देशभक्ति गीत में हेमंत कुमार के संगीत पर जागृति फिल्म से लता मंगेशकर और आदिनाथ मंगेशकर की आवाजों में एक देशभक्ति गीत सुना।

मीडियम वेव 197.2 मीटर अर्थात 1521 किलोहर्ट्ज और 104 FM MHz पर ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय रात्रि के 8 बज चुके हैं। लीजिए श्रोता प्रस्तुत है कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत में आप श्रोता द्वारा व्हाट्सएप के जरिए फरमाइश किए गए चंद सदाबहार पुराने नगमों का। तो है श्रोता कार्यक्रम का पहला नगमा सुनते हैं गोलमाल फिल्म से किशोर कुमार के आवाज में। इस गीत को बोल दिए है गुलजार ने तथा संगीत से सवारा है आरडी बर्मन ने। गीत की फरमाइश की है पदमपुर श्री गंगानगर राजस्थान से मेहर अरोरा, कीर्ति अरोरा, भूमिका अरोरा और ममता अरोरा ने।

आनंद बख्शी के गीत पर श्रोताओं आइए सुनते हैं कार्यक्रम में अगली फरमाइश का गीत फिल्म रोटी से किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में। इस गीत की फरमाइश की है लोहगढ़ ठकुरान वाला फिरोजपुर पंजाब से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरलाल सिंह, अविराज सिंह, गुरनौर सिंह और शुभदीप सिंह ने।

श्रोताओं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम में अगला गीत। फिल्म कुदरत से किशोर कुमार के आवाज में इस गीत को बोल दिए हैं मशरूर सुल्तानपुरी ने तथा संगीतकार है आरडी बर्मन। गीत की फरमाइश रिग्नी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा और मुरादाबाद दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलवीर सिंह ने की है।

किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, फिल्म गंगा की लहरें से। इस गीत को बोल दिया है मशहूर सुल्तानपुरी ने तथा संगीत से सवारा है चित्र गुप्ता ने। गीत की फरमाइश की है पजुनिया जलाओ उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसोलिया, आदर्श सार्थक, अलौकिक चंसोलिया और निमदनबाद चिन्ह हरियाणा से जसवीर सिंह अरोड़ा, जतिंदर कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर और करमजीत कौर ने।

श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम में अंतिम फिल्मेश का गीत फिल्म हीर राजा से मोहम्मद रफी के आवाज में। इस गीत के गीतकार हैं कैफी अजमी तथा संगीत दिया है मदन मोहन ने। गीत की फरमाइश की है जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनीजा, पूनम गगनीजा, विशाल, प्रिया, दिशानी और निमित आहूजा ने।

श्रोताओं, अभी आप आनंद थे कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत का, जिसके तहत हमने पेश किया आप सभी के वह सफर मैश पर आधारित कुछ बेहद प्यारे सदाबहार नगमे। अगर आप भी इस तरह की महफिल में शामिल होना चाहते हैं तो हमें सुबह 5 बजे से शाम 5 बजे तक व्हाट्सएप जरूर करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6033914908। साथ ही अपना नाम, पता, गीत के बोल और फिल्म का नाम लिखना ना भूलें, ताकि आपकी पसंद हमारे जरिए सब तक पहुंच सके। इसी के साथ आपकी फरमाइशों पर आधारित हमारा यह रोमानी और यादोबारा कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत अब यहीं पर समाप्त हुआ। फिर मिलेंगे कुछ और हसीन यादों, कुछ और नगमों के साथ। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय रात्रि के 8:23 होने वाले हैं। हमारा अगला कार्यक्रम आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित स्पोर्ट्स स्कैन रात्रि 8:23 पर, तत्पश्चात समाचार संध्या 8:45 पर तथा न्यूज़ 8 रात्रि 9 बजे। कृपया थोड़ी देर प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शक्ति सिंह और एक बार हम फिर मौजूद हैं खेल के मैदान की हर खबर और हर लिखा जोखा लेकर के आपके कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन में। तो सबसे पहले नजर डालते हैं आज की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच मुकाबला जारी। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में आज ब्राजील का मुकाबला नॉर्वे से। फ्रांस और मेक्सिको विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। विंबलडन 2026 टेनिस टूर्नामेंट में राउंड ऑफ 16 के मुकाबले शुरू हुए। भारत ने 5 स्वर्ण पदक समेत कुल 10 पदकों के साथ विश्व पैरा तीरंदाजी सीरीज में अपना अभियान संपन्न किया और फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल का 80वां संस्करण आज देश भर में आयोजित किया गया। तो सबसे पहले शुरू करते हैं क्रिकेट के रोमांच के साथ आज के कार्यक्रम को, जहां लंदन के ऐतिहासिक लॉर्ड्स मैदान पर इस समय महिला T20 क्रिकेट विश्व कप का फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच। और ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था। और इस मैच की और क्रिकेट के मैदान की ताजा अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी विशेष। विशेष, इस समय फाइनल मुकाबले में क्या ताजा अपडेट है?
1: शक्ति, पावर प्ले का आखिरी ओवर चल रहा है और एमी जोन्स और डेनियल वायट होज ये दोनों ही अपना विकेट गवाकर वापस जा चुकी हैं पवेलियन। तो इंग्लैंड जो है 36 रन पर 2 विकेट गवा चुका है। ऑस्ट्रेलिया के लिए जो दोनों विकेट हैं वो किम गार्थ और एनेबल सदरलैंड ने लिए हैं। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो अपना 9वां फाइनल आज खेल रही है और 6 बार इससे पहले विजेता बन चुकी है। और इंग्लैंड की जो टीम है वो अभी तक अपनी धरती पर T20 विश्व कप का कोई भी मुकाबला नहीं हारी है। इसी के साथ अगर हम इनके हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो 45 मुकाबले दोनों के बीच खेले गए हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने 22 और इंग्लैंड ने 20 मुकाबले जीते हैं। तो यहां अभी ऑस्ट्रेलिया की नजरें अपनी 7वें खिताब जीतने पर होंगी। वहीं इंग्लैंड जो है वो 2017 के बाद एक और ICC ट्रॉफी जीतने पर जोर कसेगा।
0: जी बिल्कुल, अपनी नजरें रखेगा एक और ट्रॉफी पर, लेकिन कह सकते हैं कि आज के इस रात में किसी एक टीम का रिकॉर्ड टूटना जरूर तय है। इससे पहले भारत को कल इंग्लैंड के साथ दूसरे T20 मैच में 4 विकेट से हार का सामना करना पड़ा।

0: मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान पर खेले गए मुकाबले में टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 190 रन बनाए। ईशान किशन ने सर्वाधिक 49 और अभिषेक शर्मा ने 43 रन का योगदान दिया। 191 रन के लक्ष्य को इंग्लिश टीम ने जैकब बेथल के 46 गेंद पर नाबाद 76 रन की पारी की बदौलत एक ओवर शेष रहते हासिल कर लिया। बेथल को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इस जीत के साथ ही इंग्लैंड सीरीज में 1-0 से आगे आ गया है और अगला मुकाबला 7 जुलाई को नॉटिंगम में खेला जाना है। हालांकि इस मैच की सबसे खास बात रही युवा वैभव सूर्यवंशी का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू। महज 15 वर्ष 99 दिन की आयु में डेब्यू करते हुए वैभव ने भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बनने का कीर्तिमान अपने नाम किया। वैभव ने खुद अपने अनुभव कैसे साझा किए सुनते हैं।
1: काफी अच्छा लग रहा है, ड्रीम ही था किसी के लिए भी इंडिया खेलना ही सबसे बड़ी बात होती थी। कि सबसे पहले मैंने अपने फादर को जाके रूम में बताया और किसी से मैंने बात नहीं की, और जो भी मेरे सर हैं, जो भी मतलब मेरे जो साथ रहते हैं उन सबों को बताया। पापा खुश हुए और बोले बस कि जो करते आ रहे अभी तक वही करना है, प्रेशर नहीं है, बस अपने गेम को बैक करना है।
0: विशेष जब भी वैभव मैदान पे उतरते हैं उनकी नजरों में कोई रिकॉर्ड होता है या कोई कीर्तिमान होता है। डेब्यू के साथ इस खिलाड़ी ने कितने नए रिकॉर्ड तोड़ दिए।
2: देखिए शक्ति, वैभव जब भी मैदान पर उतरते हैं अपने खेल से सभी को प्रभावित करते रहते हैं। अगर हम उनके रिकॉर्ड्स और आंकड़ों की बात करें तो वैभव 12 साल की उम्र में रणजी ट्रॉफी खेलने वाले सबसे युवा खिलाड़ी हो गए थे। उसके बाद उन्होंने 13 साल की उम्र में विजय हजारे ट्रॉफी में भी डेब्यू कर लिया था। उसके साथ भारतीय खिलाड़ियों में सबसे तेज शतक लगाने वाले खिलाड़ी हैं वो आईपीएल में। 35 गेंदों में उन्होंने ये कीर्तिमान अपने नाम किया था। उसके बाद 2008 में, दिलचस्प बात यह है कि 2008 में आईपीएल जो है शुरू हुआ और उसके बाद वैभव सूर्यवंशी का जन्म हुआ, तो ये भी रिकॉर्ड उनके नाम है। और अभी उन्होंने अंडर 19 विश्व कप फाइनल में 80 गेंदों में 175 रन की पारी खेलकर सभी को बहुत प्रभावित किया और इसी के साथ उनको प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के पुरस्कार से भी नवाजा गया था। और उनको सचिन से बहुत रिलेट किया जाता है शक्ति, तो इसमें बताना चाहूंगा कि सचिन और वैभव की उम्र में, डेब्यू की उम्र में 1 साल का अंतर है और जो पहला स्कोर दोनों ने बनाया था उसमें भी सिर्फ 1 रन का ही अंतर है।
0: जी बिल्कुल, सचिन ने अपने पहले मुकाबले में 15 रन बनाए थे और वैभव 14 रन बना सके, लेकिन एक बहुत बेहतरीन ट्रेलर दुनिया के क्रिकेट जगत के लिए। और अब बात करते हैं फुटबॉल के महासंग्राम फीफा विश्व कप की, जहां राउंड ऑफ 16 में आज ब्राजील का सामना नॉर्वे से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 1:30 बजे से न्यू जर्सी में होगा। वहीं कल सुबह 5:30 बजे इंग्लैंड का मुकाबला मैक्सिको से होगा। इससे पहले फ्रांस और मोरक्को ने फीफा विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली है। सुनते हैं कल खेले गए मैच का हाल।
3: फ्रांस ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए पराग्वे को 1-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। फ्रांस के इस जीत के नायक किलियन एम्बापे रहे, जिन्होंने 69वें मिनट में मैच का एकमात्र गोल किया। फ्रांस को मिली पेनाल्टी का फायदा उठाते हुए एम्बापे ने बिना कोई गलती किए गेंद को गोल पोस्ट में पहुंचाया। ये एम्बापे का इस विश्व कप में 7वां गोल है। हालांकि फ्रांस के लिए ये मुकाबला बिल्कुल आसान नहीं रहा। पराग्वे ने पूरे मैच में मजबूत डिफेंस के बल पर फ्रांस को ज्यादा मौके नहीं दिए। पहले हाफ में फ्रांस के ज्यादातर शॉट का गोलकीपर ऑरलैंडो गिल ने आसानी से बचाव किया। दूसरे हाफ में लगातार बढ़ते दबाव के बीच आखिरकार 69वें मिनट में फ्रांस को पेनाल्टी मिली और एम्बापे ने उसे गोल में बदलकर टीम को निर्णायक बढ़त दिलाई। इसके बाद फ्रांस ने बढ़त को अंत तक कायम रखा और 1-0 की जीत के साथ क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया।
4: The French machine does indeed march on.
3: इससे पहले कल रात राउंड ऑफ 16 के पहले मैच में मोरक्को ने सह मेजबान कनाडा को 3-0 से हराते हुए क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की की। मैच की शुरुआत में कनाडा ने आक्रामक खेल दिखाया और कई अच्छे मौके बनाए, पर टीम इन मौकों का फायदा उठाने में नाकाम रही। इसके बाद 50वें मिनट में फ्री किक पर हकीमी के पास को अजेदीन ओनाही ने शानदार गोल में बदलकर मोरक्को को 1-0 की बढ़त दिला दी। 82वें मिनट में ओनाही ने एक और गोल करते हुए मोरक्को की बढ़त दोगुनी कर दी। इसके बाद स्टॉपेज टाइम में सोफियाने रहीमी ने तीसरा गोल दागकर टीम की जीत पर मोहर लगा दी।
5: Brahim Diaz and now Rahimi to put the gloss on it.
6: You got players of this quality. The goals can come at any moment.
5: The Atlas Lions, the first team to book their place in the quarterfinals of this FIFA World Cup.
3: अब क्वार्टर फाइनल में मोरक्को का मुकाबला फ्रांस से होगा। स्पोर्ट्स कैन के लिए प्रशांत कुमार।
0: और फीफा के रोमांच के बाद अब बात विंबलडन के ऐतिहासिक टेनिस कोर्ट की, जहां राउंड ऑफ 16 के मुकाबले शुरू हो चुके हैं। आज पुरुष सिंगल्स के

0: ओपन ऑफ 16 में नोवाक जोकोविच का मुकाबला रोमान के साथ जारी है। वहीं यानिक सोनर का मुकाबला अब से कुछ देर बाद जापान के शिंतारो मोचीजुकी से होगा। इसके अलावा दो अन्य मुकाबले खेले जाने हैं, जहां महिला सिंगल्स में जेसिका पेगुला ने ईवा जोविका को हरा दिया है, जबकि आर्यना सबालेंका और कोको गौफ भी अब से कुछ देर बाद अपने मैच खेलेंगी। तो आइए जानते हैं किन किन खिलाड़ियों ने इस दौर में अपनी जगह बना ली है।
1: फ्रेंच ओपन चैंपियन और दूसरी वरीयता प्राप्त अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने शानदार प्रदर्शन करते हुए विंबलडन प्रतियोगिता के तीसरे दौर में जगह बना ली है। वहीं इटली के माटेओ बेरेटी ने और मेजबान ब्रिटेन के युवा खिलाड़ी आर्थर फेरी ने भी जीत दर्ज कर अगले दौर का टिकट हासिल किया। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने 2 घंटे 4 मिनट तक चले मुकाबले में फ्रांस के वैलेंटिन रॉयर को सीधे सेटों में 6-1, 6-3, 7-6 से हराया। ज्वेरेव ने शुरुआत से ही शानदार खेल दिखाया और पहले 2 सेट आसानी से अपने नाम कर लिए। तीसरे सेट में रॉयर ने कड़ी टक्कर दी, लेकिन टाई ब्रेक में ज्वेरेव ने बेहतर खेल दिखाया और मैच अपने नाम कर लिया। मेजबान ब्रिटेन के 23 वर्षीय आर्थर फेरी ने भी बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए अपने करियर की सबसे बड़ी जीत दर्ज की। उन्होंने फिनलैंड के ओटो विल्टानेन को 5-7, 7-6, 6-3, 6-3 से हराया। पहले सेट में हारने के बाद फेरी ने शानदार वापसी की और लगातार 3 सेट जीतकर अगले दौर में जगह बनाई। वे वर्ष 2000 के बाद विंबलडन मेंस सिंगल्स के तीसरे दौर में पहुंचने वाले केवल 4थे ब्रिटिश वाइल्ड कार्ड खिलाड़ी बन गए हैं। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स कैन।
0: विश्व पैरा तीरंदाजी सीरीज में भावना ने फाइनल्स में अपनी ही देश की पूजा को शूटआउट में हराकर महिलाओं का पैरा रिकर्व का खिताब जीता। इसके साथ ही भारत का यादगार अभियान 10 पदकों के साथ समाप्त हो गया।
2: चेक गणराज्य की नोवे मेस्टो में विश्व पैरा तीरंदाजी सीरीज में भारत की भावना ने फाइनल में अपने ही देश की पूजा जथ्यान पर एक शानदार जीत के साथ प्रतियोगिता में भारतीय अभियान का समापन किया। पूरी तरह से भारतीयों के बीच हुए इस फाइनल मुकाबले में भावना ने निर्णायक दौर में संयम बनाए रखा और टूर्नामेंट में अपना लगातार दूसरा व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता। वहीं पूजा जथ्यान को रजत पदक से संतोष करना पड़ा। भारत ने इस प्रतियोगिता का समापन 10 पदक के साथ किया, जिसमें 5 स्वर्ण, 3 रजत और 2 कांस्य पदक शामिल थे। भारत के स्वर्ण पदक की सूची में दोनों मिक्स टीम स्पर्धाओं की जीत भी शामिल थी। शीतल देवी और श्याम सुंदर स्वामी ने फाइनल में इंडोनेशिया को 147-143 से हराकर कंपाउंड मिक्स टीम का खिताब जीता, जबकि भावना और हरविंदर सिंह ने इंडोनेशिया पर 6-2 से जीत हासिल कर रिकर्व मिक्स टीम का खिताब अपने नाम किया। हरविंदर सिंह और सुंडी विजय ने पैरा रिकर्व पुरुष डबल्स तथा भावना और पूजे जथिया ने पैरा रिकर्व महिला डबल्स में स्वर्ण पदक जीता। वैष्णवी, स्पोर्ट्स कैन।
0: और अब चलते हैं स्क्वाश की तरफ, जहां तन्वी खन्ना ने SRFI PSA चैलेंजर्स टूर्नामेंट के महिला वर्ग का खिताब अपने नाम कर लिया है। मुंबई में खेले गए फाइनल में तन्वी ने मिस्र की फरीदा वालिद को हरा करके ये खिताब जीता।
3: थर्ड सीड तन्वी खन्ना स्टेज अ रिमार्केबल कमबैक टू डिफीट इजिप्ट सेकंड सीडेड फरीदा वालिद आफ्टर बीइंग 2 गेम्स डाउन। द स्कोर लाइन रीडिंग 8-11, 2-11, 12-10, 11-9, 11-7 इन तन्वीज फेवर क्लिंच्ड द विमेंस टाइटल एट द HCL SRFI PSA चैलेंजर टूर्नामेंट एट मुंबई। तन्वी लुक्ड हेडेड फॉर अ स्ट्रेट गेम्स डिफीट आफ्टर ट्रेलिंग 4-8 इन द थर्ड गेम, बट फॉट बैक ब्रिलियंटली टू टर्न द कॉन्टेस्ट अराउंड इन 45 मिनट्स। इन द मेन्स फाइनल मलेशियाज एम साइफिक कमल रिकॉर्ड from 2 games down to beat Egypt's Yasin Shawdy 6-11, 9-11, 11-8, 14-12, 11-8. The tournament witnessed high quality competition throughout the week. For Sports Scan, S. Kishore from Mumbai.
0: तन्वी शर्मा ने इस जीत के साथ बाद अपने अनुभव स्पोर्ट्स कैन की टीम के साथ साझा किए। सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
4: Now I'm just very speechless because it's a long time since I won such a big tournament, and she's a really good player. She's been winning everything, and the last time we played, she won the match 3-2. It was very close. Just wasn't playing my best in the beginning of the match, and somehow at 8-4 something in me just turned, got my confidence back, and from there I found my length, I found my drops, saw that she was getting tired, and I just held on to that and I kept pushing till the end.
0: युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल केवल एक फिटनेस गतिविधि नहीं, बल्कि देश के स्वास्थ्य और जागरूक करने के लिए विकसित भारत बनाने का एक जन आंदोलन है। नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आज 80वें फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम में श्री मांडविया ने लोगों को फिटनेस की शपथ दिलाई और उनसे स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का आह्वान किया।
5: साइकिलिंग हार्ट को ठीक रखता है और बॉडी को भी फिट रखता है, सोल को भी ठीक रखने का काम करता है। एक साइकिलिंग से पॉल्यूशन का सॉल्यूशन होता है, अपने स्वयं को फिट रखती है।

0: साइकिलिंग ही ट्रैफिक का भी समाधान है, क्यों न हम साइकिलिंग करके विकसित भारत के प्रधानमंत्री जी के स्वप्न के साथ चले, यही आज आप सबसे अपेक्षा है।
1: तो कई समाधान लेकर के आती है इस फिटनेस वाली साइकिल। और इस अवसर पर मॉडल और अभिनेता नासिर अब्दुल्ला ने भी कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सुबह जल्दी उठना उनके लिए बेहद सुखद अनुभव रहा।
2: A pleasure to wake up at 4:15 in the morning to be able to make it here. So the energy was wonderful and itne sare log aaye the participate in this beautiful Fit India running for fitness. The minister of the sports as well to give us added encouragement about it. So it's wonderful. Cycling is a very simple exercise.
1: अब बात करते हैं बैडमिंटन की, क्योंकि आज जो पूरी दुनिया विश्व बैडमिंटन दिवस बना रही है। ये दिन हर वर्ष 5 जुलाई को मनाया जाता है। इस दिन की शुरुआत बैडमिंटन विश्व महासंघ BWF द्वारा 2022 में की गई थी, जो 5 जुलाई 1934 को अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन महासंघ की स्थापना की याद दिलाता है। और भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो ये दिन कुछ और भी खास हो जाता है, क्योंकि आज ही भारत की सबसे सफलतम बैडमिंटन खिलाड़ियों में से एक पीवी सिंधु का जन्मदिन है, जिन्होंने भारत के लिए ओलंपिक में 2 पदक और विश्व चैंपियनशिप जैसे कई कीर्तिमान अर्जित किए हैं।
3: The gold medal. She becomes the first player from India ever to win gold at the World Badminton Championships.
1: तो एक बहुत शानदार खिलाड़ी पीवी सिंधु को स्पोर्ट्स कैन की तरफ से भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, जिन्होंने भारत में बैडमिंटन की एक पूरी पीढ़ी को प्रेरणा दी है। और अब अंत में चलते चलते वापस एक बार लॉर्ड्स में खेले जा रहे T20 विश्व कप महिला विश्व कप के फाइनल के स्कोर पर नजर डाल लेते हैं, जहां 8 ओवर हो चुके हैं और इंग्लैंड की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 2 विकेट खोकर 48 रन बना लिए हैं। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा, आप अपनी राय हमें sportscan.air@gmail.com पर भेज सकते हैं। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। भारत में दक्षिण पश्चिम मॉनसून और तेज, मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी, कई राज्यों में तेज वर्षा की चेतावनी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शिवपुरी में 2500 करोड़ रुपए की लागत वाले रक्षा विनिर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी। विदेश मंत्री एस जयशंकर पश्चिम एशिया की 6 दिवसीय यात्रा पर, दोहा में कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अस्सानी से मुलाकात की। ओपेक प्लस ने बाजार स्थिरता में सहयोग के लिए अगले महीने से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में आज रात नॉर्वे का सामना ब्राजील से और टी20 क्रिकेट विश्व कप में लॉर्ड्स में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच निर्णायक मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। देश में दक्षिण पश्चिम मॉनसून और तेज हो गया है, कई राज्यों में तेज वर्षा की चेतावनी दी गई है। मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने कल छत्तीसगढ़, गुजरात, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, माहे और मध्य प्रदेश में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली के कुछ हिस्सों, हरियाणा, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उड़ीसा, सौराष्ट्र, कच्छ, उत्तराखंड और उत्तर पूर्वी राज्यों में भी हल्की से तेज बारिश की संभावना है। महाराष्ट्र में तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित है। मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़ और रत्नागिरी सहित कोंकण जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान कई स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: मुंबई में आज मूसलाधार बारिश के कारण छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लगभग 1 घंटे के लिए रनवे संचालन अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा, जिससे उड़ान सेवाएं प्रभावित हुई। बृहन्मुंबई महानगर पालिका यानी बीएमसी के अनुसार दिन भर में पेड़ गिरने की 64 घटनाएं तथा दीवार या मकान के कुछ हिस्से गिरने की 8 घटनाएं दर्ज की गई। शहर में पेड़ गिरने की 2 अलग अलग घटनाओं में 63 वर्षीय एक व्यक्ति

0: और 18 वर्षीय एक युवक की मौत हो गई। भारी बारिश के कारण थाने और पालघर जिलों में भी व्यापक नुकसान हुआ। लगातार हो रही बारिश के कारण महाराष्ट्र की कई नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। इसके चलते कई सड़कें बंद कर दी गई है, बिजली आपूर्ति बाधित हुई है और गढ़चिरी, कोल्हापुर, रायगढ़ और रत्नागिरी सहित कई जिलों में यातायात प्रभावित हुआ है। इस बीच रायगढ़ जिले के खोपोली स्थित आदोशी जलप्रपात में भारी बारिश के कारण अचानक जलस्तर बढ़ जाने से फंसे 10 से 12 पर्यटकों को पुलिस और बचाव दल ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया। शैलजा तिवले, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: गुजरात में अगले 7 दिनों में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। डांग, नौसारी, वलसाड़, दमण और दीव, दादरा और नगर हवेली, भावनगर, अमरेली तथा गिर सोमनाथ में कल बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। मछुआरों को अगले 5 दिन तक समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने आज मध्य प्रदेश के शिवपुरी में रक्षा विनिर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी। यह संयंत्र अडानी समूह द्वारा लगभग 2,500 करोड़ रुपए के निवेश से बनाया जाएगा। एक रिपोर्ट।
2: केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि आज शिवपुरी के इतिहास में एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। उन्होंने इसे एक ऐतिहासिक कदम बताया है। श्री सिंधिया ने कहा कि ये परियोजना जिले को औद्योगिक विकास, रक्षा उत्पादन और आत्मनिर्भर भारत के सपने से जोड़ेगी। उन्होंने कहा कि शिवपुरी के मेहनती युवाओं के बनाए हथियार और मिसाइल भारतीय सेना को मजबूत करेंगी। ये कारखाना राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर स्थित पाली गांव में बनेगा। इसमें गोला बारूद, उच्च तकनीक वाले हथियार और मिसाइल का उत्पादन किया जाएगा। अडानी समूह के निदेशक जीत अडानी ने कहा कि समूह वर्ष 2030 तक मध्य प्रदेश में 1,20,000 रोजगार सृजित करेगा। भोपाल से अभिनव गोयल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान सहित पश्चिम एशिया की अपनी आधिकारिक यात्रा शुरू की। यात्रा के पहले चरण में डॉ जयशंकर दोहा पहुंचे, जहां उन्होंने कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अस्सानी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं, विशेष रूप से ऊर्जा, व्यापार, निवेश, संपर्क, सुरक्षा और जनसंबंधों की समीक्षा की। सोशल मीडिया पोस्ट में विदेश मंत्री ने कहा कि उन्होंने रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने के नए अवसरों पर विचार विमर्श किया। डॉ जयशंकर ने भारतीय समुदाय की सुरक्षा तथा कल्याण सुनिश्चित करने के लिए कतर के प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया और पश्चिम एशिया संघर्ष तथा उसके प्रभाव पर उनके आकलन की साझा करने की सराहना की। डॉ जयशंकर इस महीने की 13 तारीख को अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर की यात्रा करेंगे, जहां वे 2028-29 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कार्यकाल के लिए भारत के आधिकारिक अभियान का शुभारंभ करेंगे। इंडोनेशिया गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की वहां की ऐतिहासिक यात्रा की शताब्दी मनाएगा। इसके लिए वर्ष 2026 और 2027 के दौरान 15 महीने का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इंडोनेशिया में भारत के राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की कल से शुरू होने वाली इंडोनेशिया यात्रा के दौरान इन कार्यक्रमों का शुभारंभ किया जाएगा। शताब्दी समारोहों में प्रदर्शनियां और पूरे वर्ष चलने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
3: With Prime Minister's arrival in Indonesia,
4: प्रधानमंत्री के इंडोनेशिया आगमन के साथ ही हम वर्ष 2026 और 2027 को टैगोर दिवंतारा सांस्कृतिक और शैक्षिक आदान प्रदान वर्ष के रूप में मनाएंगे। इस अवसर पर एक विशेष प्रदर्शनी आयोजित की गई है। हमने इंडोनेशिया में टैगोर विषय पर एक पुस्तक भी तैयार की है, जिसे माननीय प्रधानमंत्री को भेंट किया जाएगा। इसके अलावा रविन्द्रनाथ टैगोर की इंडोनेशिया यात्रा की स्मृति में पूरे विभिन्न सांस्कृतिक और शैक्षिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
3: राउंड द ईयर कमेमोरेटिंग टैगोर्स विजिट टू इंडोनेशिया।
1: पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने वैश्विक तेल बाजार की स्थितियों की समीक्षा के लिए आयोजित वर्चुअल बैठक के बाद इस वर्ष अगस्त से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। आज हुई बैठक के बाद जारी बयान में तेल उत्पादक समूह ने कहा कि यह निर्णय बाजार स्थिरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिया गया है। समूह ने कहा कि वह वैश्विक

0: तेल बाजार पर नजर रखना जारी रखेगा और सहमति वाले उत्पादन लक्ष्यों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा। भाग लेने वाले देशों की अगली बैठक 2 अगस्त को निर्धारित है। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार के लिए आज तेहरान में राजनीतिक, सैन्य और धार्मिक नेतृत्व ने सामूहिक प्रार्थना में भाग लिया। 9 जुलाई को मशहद में आयतुल्ला अली खामेनेई का अंतिम संस्कार किया जाएगा। इसके बाद 40 दिनों तक सार्वजनिक शोक मनाया जाएगा। ब्रिटेन की सेना ने बताया कि लाल सागर में यमन के तट पर आज एक मालवाहक जहाज पर हमला हुआ। ब्रिटेन के यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस UKMTO ने बताया कि यह हमला होदेईदा के पास हुआ, जो ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के नियंत्रण वाले क्षेत्र में है। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने विनाशकारी भूकंप के बाद सहायता के लिए भारत का आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में सुश्री रोड्रिगेज ने कहा कि ब्रिटेन, कतर, फ्रांस, भारत, बारबाडोस, ब्राजील और अर्जेंटीना के बचाव कर्मियों को उनके अमूल्य योगदान और संकट की इस घड़ी में एकजुटता प्रयासों के प्रति वेनेजुएला सम्मान व्यक्त करता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। सहकारिता मंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। मंत्रालय ने बताया कि यह समारोह सहकार से समृद्धि की परिकल्पना के अनुरूप आयोजित किया जाएगा। श्री शाह कई परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे और कई महत्वपूर्ण पहलुओं का उद्घाटन करेंगे। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण 2025 के 1 जुलाई से सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। केंद्रीय मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की। उन्होंने कहा कि विकसित भारत जी राम जी को पूरे देश में सिर्फ एक दिन में लागू कर दिया गया।
1: मनरेगा को पूरे देश में लागू करने में 3 साल लगे थे, लेकिन मुझे आप सब पर गर्व है, 1 साल 2 साल नहीं, पहले दिन ही विकसित भारत जी राम जी योजना एक साथ पूरे देश में लागू हो गई। 100 दिन नहीं, अब 125 दिन रोजगार, 5 साल में 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि 2,86,000 पंचायतों में ठीक से लग गई, तो गांव संपूर्ण विकसित हो जाएंगे, समृद्ध और विकसित गाँव का निर्माण हो जाएगा।
0: ग्रामीण विकास मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों का एक दल आज से 11 जुलाई तक कर्नाटक के दौरे पर है। इसका उद्देश्य राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठकें करना और प्रमुख योजनाओं की प्रगति और कार्यान्वयन का आकलन करना है। छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति को विश्व पटल पर विशिष्ट पहचान दिलाने वाली विश्व विख्यात पंडवानी गायिका और पद्म विभूषण से सम्मानित डॉक्टर तीजन भाई को आज शाम दुर्ग जिले में स्थित उनके पैतृक गांव गनियारी में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। इस अवसर पर जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों, कलाकारों, साहित्यकारों सहित हजारों प्रशंसकों ने नम आंखों से लोक कला की इस महान विभूति को अंतिम प्रणाम किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया पर कहा कि भारत की सांस्कृतिक विरासत के प्रसार के प्रति तीजन बाई का योगदान अविस्मरणीय रहेगा। उपराष्ट्रपति ने कहा कि तीजन बाई ने भारत की समृद्ध लोक सांस्कृतिक परंपराओं की कालजयी कहानियों को लोगों तक पहुंचाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनका निधन कला और संस्कृति जगत के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। प्रधानमंत्री मोदी ने वयोवृद्ध जनजातीय नेता और गुजरात के पूर्व वन मंत्री मोहन सिंह राठवा के निधन पर भी शोक व्यक्त किया है। जम्मू कश्मीर में वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा में भारी जनभागीदारी दर्ज की गई है। तीर्थयात्रा के पहले 3 दिनों में 56,000 से अधिक तीर्थयात्रियों ने पवित्र गुफा मंदिर में दर्शन किए। आज रिकॉर्ड 24,648 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज कैलाश मानसरोवर यात्रा 2026 के पहले जत्थे को चंपावत जिले के तनकपुर से रवाना किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कैलाश मानसरोवर यात्रा केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक जागरूकता, सांस्कृतिक एकता और राष्ट्रीय सद्भाव का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि यह तीर्थयात्रा सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास, पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा देती है। युवा मामले और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने आज सुबह नई दिल्ली में आयोजित फिट इन

0: इंडिया संडेज ऑन साइकिल पहल के 80वें संस्करण में भाग लिया। श्री सत्य साई बाबा की 100वीं जयंती के उपलक्ष्य में श्री सत्य साई सेवा संगठन के सहयोग से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। डॉक्टर मांडविया ने मीडिया से बातचीत में प्रतिदिन कम से कम एक घंटा मोबाइल स्क्रीन से दूर रहने का आग्रह किया।
1: साइकिलिंग हार्ट को ठीक रखता है और बॉडी को भी फिट रखता है, सोल को भी ठीक रखने का काम करता है। एक साइकिलिंग से पोल्यूशन का सॉल्यूशन होता है, अपने स्वयं को फिट रखती है। साइकिलिंग ही ट्रैफिक का भी समाधान है, क्यों न हम साइकिलिंग करके अपने स्वयं को फिट रखें और फ्यूल की बचत करें।
0: फीफा फुटबॉल विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल में आज नॉर्वे का सामना ब्राजील से होगा। यह मैच भारतीय समयानुसार रात 1:30 बजे से न्यू जर्सी में खेला जाएगा। वहीं कल सुबह 5:30 बजे इंग्लैंड का मुकाबला मैक्सिको से होगा। उधर महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में लंदन के लॉर्ड्स में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड के खिलाफ मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक इंग्लैंड ने 11वें ओवर में 3 विकेट पर 70 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत में दक्षिण पश्चिम मॉनसून और तेज, मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी, कई राज्यों में तेज वर्षा की चेतावनी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शिवपुरी में 2500 करोड़ रुपए की लागत वाले रक्षा विनिर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर पश्चिम एशिया की 6 दिवसीय यात्रा पर दोहा में कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अस्सानी से मुलाकात की। ओपेक प्लस ने बाजार स्थिरता में सहयोग के लिए अगले महीने से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। टी20 क्रिकेट विश्व कप में लॉर्ड्स में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच निर्णायक मुकाबला जारी और फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में आज रात नॉर्वे का सामना ब्राजील से। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: Viet Shrine during the first 2 days of the pilgrimage. 20,145 pilgrims performed darshan at the cave shrine on the second day of the yatra. Uttarakhand Chief Minister Pushkar Singh Dhami today flagged off the first batch of the Kailash Mansarovar Yatra 2026 from Tanakpur in Champawat district for the next leg of the pilgrimage. The first batch comprises 49 pilgrims. On the occasion, the Chief Minister said the Kailash Mansarovar Yatra is not just a religious journey, but a symbol of spiritual awareness, cultural unity and national harmony. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Southwest monsoon intensified across India. Red alert issued for Mumbai. Warning of heavy rain in several states. Union Minister Jyotiraditya Sindhya and MP Chief Minister Dr. Mohan Yadav lay foundation stone of 2,500 crore rupee defense manufacturing plant in Shivpuri. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar begins his six-day visit to West Asia, meets Qatari Prime Minister Mohammed bin Abdul Rahman bin Jassim Al Thani in Doha. OPEC Plus agrees to increase oil production by 188,000 barrels per day from next month to support market stability. In T20 Cricket World Cup Summit clash underway between hosts England and Australia at the Lords. And in FIFA World Cup, Brazil to take on Norway in the round of 16 at New Jersey tonight. And that is all in the news at 9. Good night.
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित न्यूज एट 9। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय रात्रि के 9:15 हो गए हैं। तो श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। आइए, जाते जाते हम आपको अवगत करवाते हैं हमारे केंद्र से कल प्रसारित किए जाने वाले चंद कार्यक्रमों से। कल दोपहर 2:30 पर भक्ति गीत का कार्यक्रम वंदना। कल शाम 4:30 पर शास्त्र संगीत का कार्यक्रम राग रंग। और कल संध्या 7:10 पर साप्ताहिक कार्यक्रम ग्रामीण प्रसारण। तो श्रोताओं, ये थे हमारे केंद्र से कल प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त विवरण। इसी के साथ आज का प्रसारण अब यहीं पर समाप्त हुआ। हम आपकी सेवा में कल दोपहर 2 बजे पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए प्रसारण सहायक श्री थुतन डाशी, नियंत्रण कक्ष में उपस्थित तकनीकी अभियंता श्री न्यूटन बोरा और श्री अश्युत बर्मन, ट्रांसमीटर में उपस्थित तकनीकी अभियंता श्री हेमंता श्रोगेरी तथा अन्य सहकर्मियों के साथ आज की हिंदी उत्कोषिका येशी पेमा को इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि। जय हिंद।